0: वागे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र पर रिले कराशे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कैर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
2: हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू। इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलमार्ग को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष के सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा हलचल करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रहे काबो वर्डे के गोलकीपर वजनहा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा हलचल माना जा रहा है। उधर गांगुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगेट के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। 2,93 એટલે કે 1,304 કિલોહર્ટ્ઝ પર આકાશવાણીના ભુજ કેન્દ્રનું પ્રસારણ સાંભળી રહ્યા છો. પ્રસ્તુત કરીએ વિચાર બિંદુ. આજનો વિચાર છે પુરુષાર્થ. પ્રથમ કલ્પના મહેતા.

संविधानिक विचार बिंदु पुरुषार्थ पठन कल्पना माता प्रसारण आकाशवाणी में भुज केंद्र पर थे करवा मावन हमें प्रस्तुत करिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। कार्यक्रम की शुरुआत करिए भारती व्यास ने स्वर साधे। रचनाकार मुक्तानंद।

आप दो लगाग में सांभर आए हो तो कार्यक्रम अर्चना में हमें सांभरिए अमरदास की रचना कंठ छी हर बांध वो

ना भाई ना, मैंने खबर छे के मानसून एक मेहरबान भरी है ना जवाए, मैंने माछी मारी है ना कराए, समझो ये बराबर मानसून एक दरमियान दरियो खेलो एक गंभीर रूप से सजा पात्र गुनो छे। अने हाँ, जो कोई अजानी अथवा शंकास्पद व्यक्ति के बोट दरिया में देखा है तो तात्कालिक 1093 पर कॉल करी मरीन पुलिस ने जान कर दी। आपने सजागता अने तकेदारी, आप एक दरियाई सुरक्षा की खातरी।

बैनर और राष्ट्रीय सेना का युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। बैनर भालुओं का संहार करते रावण को लक्ष्मण ने चुनौती दी। रावण तो अपने पुत्र घाती को ढूंढ ही रहा था। उसने उन पर प्रहार आरंभ कर दिया। लक्ष्मण ने उसके लाखों अस्त्र काट डाले, उसके रथ को बाणों से खंडित कर दिया। सौ सौ बाण उसके दसों सिरों पर मारे और उतने ही बाण उसकी छाती में। रावण मूर्छित हो गया, क्योंकि मूर्छा अवस्था से उठते ही उसने ब्रह्मा से प्राप्त अस्त्र लक्ष्मण को छाती में मारा, जिसके प्रहार से वे धरती पर गिर पड़े। रावण ने उन्हें उठा लेने की चेष्टा की, किंतु शेष नाग के रूप में जिसने पूरे भुवन को एक तिनके के समान अपने कंध पर उठा रखा है, उसे भला रावण कैसे उठा सकता। रावण को लक्ष्मण के शरीर को उठाने का प्रयत्न करते देख हनुमान जो आगे आए तो उसने उन पर भूसे से प्रहार किया। अपने को संभालते हुए हनुमान ने उसे जो भूसा मारा तो रावण एक बार फिर मूर्छित हो गया। इस बार मूर्छा टूटने पर रावण यज्ञ करने के लिए अपने नए

0: श्रेणी में बुध के प्रति आख्यान दे रहे हैं श्री रामचरित मानस कांड कलाकार भूपेंद्र सिंह। 18:55 पर संस्कृत में समाचार नई दिल्ली केंद्र पर रिले कराशे।
1: वार्ता श्रूयंत प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी।

को विचार विनिमय कर राष्ट्रपति मैक्रो वर्ग प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समाह्वान निवारणा संयुक्त रूपेण कार्याचरण से विषय कार्यरात्रि भोज से आयोजन अकोत् तथा पूर्व सह अमेरिका देश से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूके देश से प्रधानमंत्री केर स्टारमर इत्यादि नेतृभि सह जी सेवन देशा नेतृण औपचारिक रूपेण स्वागत विहितवान। यूरोपीय आयोग से अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन यूरोपीय परिषद अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा च शिखर सम्मेलने भागं भजन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ह्यः फ्रांस देशे मोनाको देशस्य राज्य मन्त्रिणा क्रिस्टोफ मिरमेंड विदेश कार्य सहकार मंत्रिणा इसाबेल ब्लेरो अमादे वित्त

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एविया पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एविया शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय पर रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिक्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया के एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत हॉर्मुज और डेमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। केंद्र ने नीट UG पूरक परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट UG पूरक परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के संबंध में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष के सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13,000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में कार्बो वर्डे की टीम ने प्रबल दलदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रहे कार्बो वर्डे के गोलकीपर गुजेमा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। कार्बो कार्डो करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा लटफेर माना जा रहा है। बैंगलोर में एक दिवसीय क्रिकेट के त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: का रुपया मैं रुकिए भाई।
1: समाचार का आकाशवाणी मंगा बन रही है कल बस्ती से मुझाचों समाचार में जीवन प्रसारण आप हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गुजरात पर भी सुन सकते हो। वो समाचार मेटे हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/gov हमारा एक्स हैंडल AIR_ABD में फॉलो कर सो। अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा सौथी व्यस्त व्यापारी विस्तार एवं सीजी रोड पर म्युनिसिपल मार्केट पास प्रायोगिक धोरणे पेलिकन ट्राफिक सिग्नल लगावाई छे। आ नवो सिग्नल हाल में अमदावाद शहर ट्राफिक पोलिस ने कामगीरी ने नागरिकों वपराश मे सौंपा आयु छे। पेलिकन सिग्नल ए खास कर पदयात्रियों डिजाइन कर बटन ऑपरेटेड सिग्नल सीस्टम छे। जारे कोई नागरिक ने व्यस्त रोड ओडंगव हो तरह तेमणे सिग्नल ने थांभला पर लगावेलू बटन दबावानु रहेशे। बटन दबावानी साथे ज सिग्नल सीस्टम सक्रिय थशे अने थोड़ी ज क्षण में वाहनों माटेनी लाइन लाइट थई जशे। आनाथी वाहनों उभराई जशे अने पदयात्रियों ने कोईपण भय विना सुरक्षित रीते रस्तो ओडंगवा माटे पूरतो समय मळी रहेशे। अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यूसीडी विभाग द्वारा अमलीकृत प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर निधि योजना हेठ विविध लोन साइकलों में समाविष्ट कुल 165 लाभार्थी ने लोन मंजूरी पत्र वितरण कर मेयर रितेश बारोट की उपस्थिति में योजना मेला में योजना लाभ मेलवा इच्छुक आश्रे 190 शेरी फेरियाओं की नवी लोन अरजीन बैंक में रजिस्ट्रेशन कर સુરતના સલાબતપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા 33 વર્ષ જૂના લૂંટના કેસમાં પોલીસે 3 વોન્ટેડ ગુનેગારોની ધરપકડ કરી છે। 1992 ફરાર આરોપીને શોધવા માટે પોલીસે ટેકનિકલ અને માનવ દેખરેખનો ઉપયોગ કર્યો હતો। આ અંગે સુરત DCP કરણ દેસાઈએ વધુ માહિતી આપી।
2: ટેકનિકલ સર્વેલન્સ ઓર મોર ઓવર હ્યુમન

एक्सपर्ट आप सुन रहे हो आकाशवाणी में भोज केंद्र सात निवेश में कैश प्रस्तुत करिए प्रभु स्मरण संगीत में भजन में कार्यक्रम वंदना कार्यक्रम की शुरुआत करिए आशा भोसले ने शर्मा गवाई अगीत साथ है।

जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। कभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिसे देश का बिजली बिल घटा है।

0: से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दुनिया घटी है।
1: भक्ति गीत सांभळीए सुमन कल्याणपुरना शर्मा, रचनाकार छे मीरा।

जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की

0: 1200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: आपसे अभ्यर्थन है नॉर्थ ईस्ट अभी के दिक्कत है
0: बारह साल विश्वास के विकास के।

0: कृष्ण शर्मा गवाई और भक्ति गीत साथ ही प्रभु स्मरणीय संगीत भजन में कार्यक्रम वंदना कही समाप्त करिए। कार्यक्रम में प्रसारण आकाशवाणी में भुज केंद्र पर करवाया आयु। श्रोता मित्रों प्रस्तुत करिए कार्यक्रम प्रासंगिक। आज नो विषय छे प्राकृतिक कृषि पद्धति नु शिक्षण। संपादन अशरफ मथवाणी, पठन कल्पना शाह।
1: प्राकृतिक खेती एक एवी खेती पद्धति छे कि जेमा जमीन ना पाक उत्पादकता शक्ति में वधारो थाय छे, पानी अने हवा नी गुणवत्ता में पण सुधारो थाय छे। प्राकृतिक खेती पद्धति पोषक तत्वों थी भरपूर खोराक नु उत्पादन करवामां मदद करे छे। प्राकृतिक कृषि में पीयत व्यवस्था अवाज तर्क अने कारणों थी गोठवामां आवे छे, जेथी संसाधनो नो बचाव पण थाय अने उत्पादन पण वधे। प्राकृतिक कृषि शिक्षण एटले केमिकल अने खातर वगरनी संपूर्ण वैज्ञानिक खेती पद्धति। आ पद्धति में जमीन की फलद्रुपता वधारवा अने देशी पद्धतिओ अपनावा पर भार मुकवामां आवे छे। राज्य में आवेली कृषि युनिवर्सिटीओ जेम के आणंद, जूनागढ़, दांतीवाड़ा, नवसारी वगैरह द्वारा प्राकृतिक खेती पुस्तकों अने मॉड्यूल तैयार करवामां आव्या छे। आ उपरांत राज्य सरकार की आई खेडूत पोर्टल पर प्राकृतिक कृषि योजनाओ, तालीम शिबिरो अने सहाय नी तमाम विगतो उपलब्ध छे। आत्मा प्रोजेक्ट हेठळ ग्राम्य स्तरे कृषि विस्तरण अधिकारीओ अने वैज्ञानिको द्वारा खेडूतोने प्राकृतिक खेती नी मफत तालीम आपवामां आवे छे। खेडूत हवे आधुनिक बन्यो छे अने साथे साथे प्राकृतिक खेती नुं महत्व पण समजतो थयो छे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ना मार्गदर्शन में देश ना 12 कृषि वैज्ञानिको अने विशेष

आकाशवाणी भूज समाचार कल्पना शर्मा जैसे। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यूरोपियन संघ मुक्त व्यापार करार पर बातचीत आगे बढ़ाने सरकार बदल स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको नो तमनो आभार व्यक्त करो। तमने कहू बने पक्ष आ करार ना झड़पी अमलीकरण माटे काम करशे जेथी तमने उद्योगो स्टार्टअप्स अने व्यापारी ने लाभ मिली सके। ब्रातिस्लावामां स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री साथे संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में संबोधता श्री मोदी ने कहू मुक्त व्यापार करार नु सफल समापन भारत यूरोपियन संघ ने आर्थिक संबंध में महत्वपूर्ण साबित होते। वैश्विक मुद्दाओं अंगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहू भारत और स्लोवाकिया तमाम विवाद और तनाव नु समाधान शांतिपूर्ण रीते थव जोईए तेना पर सहमत थया छे। पश्चिम एशिया में चाली रहे संघर्ष ने समाप्त करने अमेरिका और ईरान वच्चे थयेली समझूती ने भारत स्वागत कर्यु। आ संघर्ष से समग्र विश्व में गंभीर आर्थिक संकट सर्जायु और अनेक देश में जानमाल नु नुकसान थयु। सोशल मीडिया पर एक संदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहू भारत ने आशा है कि आ समझूती थी क्षेत्र में शांति और स्थिरता जलवाई रहते शिपिंग और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होते। प्रधानमंत्री कहू भारत अन्य मुद्दाओं पर चर्चा कायमी अंतिम समाधान सुधी पहुंचवा तत्पर है। भारतीय रेलवे अहमदाबाद

0: so much I've been looking for a time when it's gone. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી G7 સમિટમાં ભાગ લેવા માટે આજે ફાન્સ પહોંચશે. ટ્રમ્પ G7 બેઠક માટે ફાન્સ પહોંચ્યા. લિક્વિડ નેચરલ ગેસ કેરિયર દિશા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી સુરક્ષિત રીતે પસાર થયું. યુપીએસસીએ સિવિલ સર્વિસીસ પ્રિલિમિનરી પરીક્ષા CSEનું પરિણામ જાહેર કર્યું. કેન્દ્રીય ગૃહ સચિવ ગોવિંદ મોહને નીટ UG પુનઃ પરીક્ષા પહેલા રાજ્ય સરકારોની તૈયારીની સમીક્ષા કરી. DRDO સ્વદેશી રીતે વિકસિત લાંબા અંતરની જમીન આધારિત ક્રુઝ મિસાઇલનું સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ કર્યું. સમાચાર વિગતવાર. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે ફાન્સના એવિયનમાં G7 સમિટમાં ભાગ લેવા માટે 2 દિવસની મુલાકાતે પહોંચશે, જે તેમના 2 દેશોના પ્રવાસના 3જા તબક્કામાં છે. સાંભળીએ એક અહેવાલ.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री G7 देशों, साझेदार देशों और विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रतिनिधियों के साथ फोर्जिंग न्यू पार्टनरशिप्स एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी विषय पर आयोजित कार्य सत्र में हिस्सा लेंगे. प्रधानमंत्री की कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करने का भी कार्यक्रम है. इसके बाद वह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित पहला डिनर में शामिल होंगे. प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. फ्रांस के एवियो से अंकित कुमार.
0: G7 समिट में भारत ने नियमित भागीदारी, शांति, सुरक्षा, विकास और पर्यावरण और टिकाऊपन संबंधित वैश्विक पड़कारों का सामना करवाना नई दिल्ली की भूमिका और योगदान में प्रतिबिंबित करे छे.
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारी में भी दिखाई दे रहा है. हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेक्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विबो मीट में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है. इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फहद नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द वाइट डॉग क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवरियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हुर्मुज़ जलबंदर मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बमवर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा अटफेर करते हुए केप वर्दी की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई महीनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवरियो पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न

कि जिस सात देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी नवाचार विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की जी सात

इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है,

अमेरिका ने दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बमनाशक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय

0: अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर दीवान की दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों को मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं।
1: अमेरिका और ईरान

से नामनूज। फीफा विश्व कप में केप वर्दे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रहे केप वर्दे के गोलकीपर मोजीना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा मतफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप मैच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पूरक परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1,000 रिक्तियों के लिए 13,000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और संरचना के जीवन का कांजी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है जय भारती। धन्यवाद।

बहुत बढ़िया पढ़ने प्रार्थना का शुरू किया है। दैनिक जागरण लिखता है अमरीका ईरान में समझौता, हॉर्मुज से निकलने लगे जहाज, जयसत्ता की सुर्खी है स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार विश्व रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मानसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्ता ने अपना

पर हुआ था। मेंटेलिटी मोबाइल चलाना जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5,400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेक्नो सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अपान, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही है, हिंदुस्तान की खबर है। धन्यवाद जिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सौभाग्य ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइट ऑफ फ्रांस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एबो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन का निर्यात शुल्क बढ़ाया। पेट्रोल का निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जयपुर दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होमस जलबंधु मिट्टी से सुरक्षित निकला। दक्षिण कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम दर्शक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़े अपसेट करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से जीता।

0: सुन हमने दोनों देशों के लोगों के भले के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: The Prime Minister said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.

Canada. A mass strike drove the Canada out.

sí.

मनुष्य मित्र तरीके का ही मेरे समाज के तरीके मतलब ये समझा जो मेरा पुलिस में मतलब उड़खण हुए इनके पांच कम भैया पाई बने।

श्रोता मित्रों, हवे सांभळी गुजराती सुगम संगीत नो कार्यक्रम गीत सुधा। सौ प्रथम सांभळीए गीतकार महेश शाह ने रचना, स्वर भूपेंद्र सिंह।

सिर्फ चिलचिलाती धूप कहकर आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं।

गीतकार मेघबिंदु की रचना स्वर पुरुषोत्तम उपाध्याय।

0: Paranasal, Vishwaske, Vikaske, Janatilake. पता है जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। कब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी है
1: सिकंदर तू अत्यारे दरिये जाए छे?
2: अरे ना भाई ना, मने खबर छे के मानसून ब्रेक दरमियान दरिये ना जवाय अने माछी मारिये ना फेराय, समझ्यो?
1: के बराबर मानसून ब्रेक दरमियान दरियो खेरवो ए गंभीर अने सजापात्र गुनो छे। अने हाँ, जो कोई अजाणी अथवा शंकास्पद व्यक्ति के बोट दरिया ना देखाय तो तात्कालिक 1093 पर कॉल करी मरीन पुलिस ने जान कर दी। आपकी सजागता आने का तैयारी आपके दरियाई सुरक्षा की खातरी गुजरात मरीन पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: गुजराती सुगम संगीत में कार्यक्रम गीत सुधा, कार्यक्रम में प्रसारण आकाशवाणी।

0: जानिए ने पुणे की जानकारी से हमारा हर पल रहक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। लगता की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम के शानदार मस्त मन भवन लाजवाब प्रस्तुति के लिए NCERT की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी सार्थक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
0: मिलाएगा छत्तीसगढ़ से रोशन लालदेवंगन, कौशल्या देवंगन, हेमलता और डिंपल देवंगन।
1: और कस्बा बराला जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
0: और बटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहे संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
1: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेक अनेक विषयों की जानकारियाँ।
0: आशा है आपको वे जरूर पसंद आते होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारे इस सप्ताह की चर्चा का?
1: मनीष जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत के अनूठे और खूबसूरत झीलों के बारे में।
0: जी जी जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोता, इस सप्ताह हम आपको मन कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत के सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
1: छोटा सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है। तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी आपको बताते हैं, तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग है। सबसे पहले बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर यदि आप ध्यान दें तो प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओ, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकतक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओ, आपको बता दें कि लोकतक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत है हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओ, लोकतक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरते हुए झील का क्या मतलब? तो आपको

0: के भी अनोखी बात है। और श्रोताओं एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं। जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकतक झील के ऊपर से गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देते हैं और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल से दिखने वाली आकृतियां हैं। तो आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है, तो आपको बताते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुंदे कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाते रहते हैं। और हाँ श्रोताओ, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकतक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओ, लोकतक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकतक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें लोकतक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओ, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरण की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरण कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरण यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकतक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओ, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकतक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकतक झील। सचमुच यहाँ फुंगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओ, यह थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध अनूठी लोकतक झील की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, प्रश्न है लोकतक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकतक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं। हाँ, आप अपना उत्तर संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cia.nac.in। आप हमारा IVS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता। साथियों नमस्कार।
1: नमस्कार साथियों।
0: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीव यानी आखिरी पत्ता।
1: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
0: अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनविच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीय और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे
1: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सके और दुनिया के सामने ग्रीनविच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सके। इसी ग्रीनविच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आई। वो दोनों चित्रकार थी और वो भी वहाँ के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थी। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
0: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
2: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
3: अरे सू, ग्रीनविच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
2: अरे हाँ, तो सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
1: साथियों, वो मिले तो थे वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों, बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी, वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
0: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करते थे। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हाँ हूँ कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
1: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
3: सू
4: जी,
3: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
4: जी हाँ।
3: फिर मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
4: जी डॉक्टर साहब।
3: अब वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
4: मैं पूछती हूँ।
0: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को ढूंढते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
1: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
0: देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
4: 13, 12, 11, ओह, जैसे अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। सू
1: सू ने जैसे को झंझोरा और पूछा,

0: मुश्किल हो जाती, लेकिन लेकिन अब मैं नहीं गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सर।
1: सू ने घर से बाहर देखा, खिड़की के सामने बस एक आईने पेपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
0: जानसी उस दिन क्या सोचे जब कम हो गए हैं? तुम क्या बन रही हो? 6 9 6 5 4

住。Thank you.

0: 那女人用用这个刀刃
1: 这个刀
0: 爷爷我是第一个第二个爷爷我是第一个我和你把他给这一个了我是第一
1: 我是第一个长子
0: 我是第一个मेरी माँ तो जाएगी सो ओह नो ये क्या कह रही हो तुम जान से
1: ऐसा कुछ नहीं है ये तुम्हारा भ्रम है
0: नहीं ये तय है सो उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सो
1: क्या
0: सो अब सिर्फ तीन बच्चे बचे हैं ज्यादा समय नहीं है मेरे पास
1: सो जान से

0: साथियों, सोनी उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
1: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को संकी और लगभग पागल समझते थे।
0: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेलमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनविच गांव में रह रहे थे।
1: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
2: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया।

0: खामोशी से सुपर देखा। एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा, जोशी अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा, मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा। इतना कहकर इस कदमों से मिस्टर बेलमैन वहां से चले गए।
1: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जोंसी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी, आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें

उसी खिड़की की ओर देखती रही। इस तरह पूरा दिन बीत गया और वो आखिरी पत्ता अभी भी वही था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया, पत्ता वही का वही था। नैन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही। इस दौरान बर्फबारी के साथ घर के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी।

0: जैसे ही सुबह हुई जैंसी ने सू से कहा,
1: सू मेरी दोस्त।
0: हाँ जैंसी,
1: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता
2: की तुम्हें रोह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जैंसी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, कुत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल रहा था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। अचानक जैंसी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
0: सू, हाँ जैंसी,
1: सू, ऐसा लगने लगा है मुझे नई जिंदगी मिलेगी, मैं नहीं मरूंगी।
0: हाँ बिल्कुल,
1: अब मैं नहीं मरूंगी सू,
0: बिल्कुल जॉन्स।
1: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
0: पत्ता?
1: हाँ,
0: मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा।
1: देखो ना,
0: वो पत्ता अभी भी नहीं है।
1: हाँ,
0: हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्स, मैंने देखा।
1: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वही का वही था। जैंसी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
2: अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
1: जैंसी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा।

0: डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
1: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
0: बेहतर। ये लो कॉफी पियो। थैंक यू
1: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
0: क्या हुआ?
1: वो मिस्टर बेमन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
0: कौन बेमन? वही बड़ी कलाकार?
1: हाँ।
0: जो मुझे उस दिन देखने आई थी?
1: हाँ वही।
0: जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनूंगा, वही ना?
1: हाँ वही मिस्टर बेमन। उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
0: क्या?
1: अभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पत्थर में गिर गए और वो आखिरी पत्ता
0: क्यों नहीं गिरा?
1: हाँ,
0: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है? सू
2: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
1: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेमन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ पड़ी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवास किसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहाँ वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
0: पेंटिंग?
1: हाँ।
0: कैसी पेंटिंग?
1: जो पत्ता तुम देख रहे हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेमन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
0: वो पेंटिंग है?
1: हाँ।
0: असली पत्ता नहीं है?
1: नहीं।
0: लेकिन सू, इतना असली लग रहा है।
1: हाँ जैसी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
0: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा और सू उन्होंने बना दिया।
1: हाँ जॉन्सी,
0: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस को।
1: उन्होंने बना दिया,
0: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली। सो बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे। सो
1: जॉन्सी
0: प्लीज, मास्टरपीस, आखिरी पत्ता, आखिरी पत्ता।
3: डुबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
2: ग्रीनविच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे और वो आंसू अविरल बहकर उस बूढ़े कला

आकाशवाणी भूज प्रस्तुत छे मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी G7 समिट में भाग लेवा माटे आजे फ्रांस पहुंचे। लिक्विफाइड नेचुरल गैस कैरियर दिशा होर्मुझ स्ट्रेट माथी सुरक्षित रीते पसार थयुं। यूपीएससीए सिविल सर्विसेस प्रीलिमिनरी परीक्षा CSE नुं परिणाम जाहिर कर्युं। केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहने नीट UG पूर्व परीक्षा पहला राज्य सरकारोनी सुरक्षा अने लॉजिस्टिकल तैयारीओनी समीक्षा करी। DRDO स्वदेशी रीते विकसित लांबा अंतरनी जमीन आधारित क्रूज मिसाइलनुं सफलतापूर्वक परीक्षण कर्युं। केन्द्रीय वाणिज्य अने उद्योग मंत्री पीयूष गोयले फ्रांसमां यूरोपना प्रथम अने सौथी मोटा विज्ञान अने टेक्नोलॉजी हब सोफिया एंटीपोलिसनी मुलाकात लीधी। कुमकुम भाग्य अने वागले की दुनिया जेवा लोकप्रिय शोमां भूमिकाओ माटे जाणीती टेलिविजन अभिनेत्री संचिता उगड़ेनुं अवसान। ईरान साथे करारनी जाहेरात कर्या पछी अमेरिकी राष्ट्रप्रमुख डोनाल्ड ट्रम्प G7 समिट माटे फ्रांस पहोंच्या। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले कहूं कि जयरे योजनाओं सीधो लाभ लोग सुधी पहुंचे तेरे ज जन विश्वास दृढ़ बने। जाहिर थे नवी औद्योगिक नीति थी विविध क्षेत्र में 15-45% सुधीना विविध इंसेंटिव द्वारा उद्योगों ने प्रोत्साहन मिले तव विश्वास व्यक्त करते नायब मुख्यमंत्री। यात्राधाम पावागढ़ खाते अधिक मास में सोमवती अमास निमित्त हजारों श्रद्धालुओं मां काली माता दर्शनार्थे उमटा। नलिया थी सामख्यारी सुधीनो रेलवे ट्रेक कवच 4.0 थी सुरक्षित बनशे। भुजना सुपार्श्व जैन सेवा मंडल ने स्थापक अने जीवदया प्रेमी शशिकांत मोहनलाल शाहनु अवसान थयुं। कच्छ जिल्लामां 27 जून 2026 सुधी हथियारबंदी जाहेर कराई। जिल्लामां सरेराश 15-25 किलोमीटरनी झड़पे फूंकायेला वेगीला

0: ऐं फैलायो अने कान मात्रा वही
1: असां चयो वही कोन
0: बतावे

जैसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं।

0: जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। कब से नॉर्थ ईस्ट से दुनिया घटी है?
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संतवाणी। आज आप नारायण स्वामी में कंठे गवाल भजन सुन रहे हैं। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी में भुज केंद्र पर करवाया गया है। श्रोता मित्रों, सवार में बस थोड़ा जा रहा है। प्रस्तुत करें कार्यक्रम मनोरंजन। आज ख्यातनाम अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें अपने मिथुनदा तरीके पर ओळखे छे, इनका जन्मदिवस निमित्त आकाशवाणी भुज तुमने खूब खूब शुभकामनाएं पाठी छे। मिथुन चक्रवर्ती नो जन्म 16 जून 1950 ना रोज कोलकाता में थयो हतो। तेमणे कोलकाता यूनिवर्सिटी थी अभ्यास कर्यो अने पछी फिल्म जगत में पग मूक्यो। 1976 में फिल्म मृग्या की शुरुआत करना मिथुन चक्रवर्ती पहले फिल्म माटे श्रेष्ठ अभिनेता तरीके राष्ट्रीय पुरस्कार पण जीत्यो हतो। तेमनी साची ओळख मळी 1982 में आवी फिल्म डिस्को डांसर थी। फिल्म डिस्को डांसर तेमणे विश्वभर में लोकप्रियता अपावी अने तेओ डिस्को किंग तरीके जाणीता बन्या। कार्यक्रम की शुरुआत करें एक सुपरहिट फिल्म का गीत साथ ही स्वरबद्ध करिए विजय बेनेडिक्ट।

0: जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी है।
1: सिकंदर तू अत्यारे दरिये जाई छे?
2: अरे ना भाई ना, मने खबर छे के मानसून एक दरमियान दरिये न जवाय अने माछी मारिये न खराय, समझो?
1: के बराबर, मानसून एक दरमियान दरियो खेलो ए गंभीर अने सजापात्र गुनो छे। अने हाँ, जो कोई अजानी अथवा शंकास्पद व्यक्ति के बोट दरिया में देखा है तो तात्कालिक 1093 पर कॉल करी मरीन पुलिस ने जान कर दी। अपनी सजागता अने तत्वारी आपे दरियाई सुरक्षा की खातरी, गुजरात मरीन पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: फिल्म तकदीर का बादशाह गीत।

0: जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: दरअसल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दुनिया घटी।

0: कार्यक्रम मनोरंजन अंतर्गत अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने जन्मदिवस पर विशेष फिल्मी गीतों
1: जानते हो दोस्तों, जैसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था।

0: 1200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। कब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी है?
1: सिकंदरपुर क्यों बदले जाए?
2: अरे ना भाई ना, मने खबर छे के मानसून बेग दरमियान बढ़िया ना जमाए अने माछी मारी ना कराए, समझो?
1: ये बराबर मानसून ब्रेक दरमियान बढ़िया खेलो एक गंभीर अने सजा पात्र गुनो छे। अने हाँ, जो कोई अजानी अथवा शंकास्पद व्यक्ति के बोट दरिया में देखा है तो तात्कालिक 1093 पर कॉल करी मरीन पुलिस ने जान कर दी। आपकी सजागता अने तकेदारी आप दरियाई सुरक्षा की खातरी।

पता है जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर रहता था वो हमारे डैम के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की

0: सुनते रहिए आकाशवाणी भोज।
1: श्रोता मित्र मिथुन चक्रवर्ती ने सौथी मोटी खासियत हती तेमनी वर्सेटाइल एक्टिंग। तेमने एक तरफ डिस्को डांसर जेवी फिल्मों में पोतानी स्टाइल अने एनर्जी थी युवानों ने मंत्र मुग्ध कर्या, तो बीजी तरफ गंभीर अने भावनात्मक तनाव तेमने ऊंडो अभिनय कर्यो हतो। एवी ज तेमनी फिल्म हम पांच। सांभळीए हम पांच नुं गीत लता मंगेशकर अने अमित कुमार ने स्वरमा।

0: மராசால் விஷ்வாஸ்டே விகாஸ்டே ஜனக்கல்யாணே. பதா ஜோ நார்த் ஈஸ்ட் கபி தூர் லக்தா தா वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है. सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है. तब से नॉर्थ ईस्ट से दुनिया घटी है. विश्वास के विकास के जन कल्याण के.
1: कार्यक्रम में हमें सांभिए किशोर कुमार और आशा भोसले युगल शर्मा, फिल्म जाग उठा इंसान में गीत.

0: रहा है जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। कब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी है?
1: सफर बतावे छे कि एक साचो कलाकार मात्र एक इमेज थी नहीं परंतु पोताना कामना विविध रंगों थी।

अंतर्गत ख्यातनाम अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ना जन्म दिवस पर विशेष फिल्म गीतों आकाशवाणी भूज तेमने तेमना जन्म दिवस पर खूब खूब शुभेच्छा पाठवे छे। कार्यक्रम नो प्रसारण आकाशवाणी ना भूज केंद्र पर करवामां आव्युं।

0: सुधारा बिल 2026 मार्फत प्रेविस मंत्रालय द्वारा 79 केंद्रीय कायदे में सुधारा करने आये हुए जनथे बड़े मरे क्षेत्र में 784 जगह के आवरीगण में आये हुए बड़े मरे थे देश में घने कायदे थकी नंगे प्रक्रियागत बनू पा उन्हें जिस श्रेणी में अचनी हुई उदाहरण तरीके फाइलिंग की समय मर्यादा चुकी बने थी खोटी रीते फॉर्म फाइल करे थी अथवा नंदी कागर जी बोल करे थी कनेक नागरिक के अने व्यवसाय कार्य के फौजदारी दंड जो सामने मारण पड़ो हो जिनमें जेलवास की शक्यता जो समावेश थी हो अन्यानु घने जोगवायु जुनी नियमनकारी पद्धतियों नानु अचल हुई फेरे में कायदे के वधु संतुलित अने व्यवहारों बनाए जी जरूर रखते जी ने सरकार हैरी जोगवाई जी समीक्षा करे जी प्रक्रिया शुरू के में हन सुधारे जी शुरुआत जाहिर ट्रस्ट जोगवाई में सुधारो अधिनियम 2023 के अमल साथे थई भी हन कायदे 42 जटले केंद्रीय कायदे में सुधारो के 183 जोगवाई के गुनाहित जहर के वे जेल जी सजा के नाना किए दंड के अन्य वहीवटी पगले थी बदले घने जुदे जुदे कायदे में रेल नंदी नंदी ने प्रक्रियागत बोलेला फौजदारी दंड के व्यवस्थित रीते दूर करे जो ही पहलो संकलित कायदा किए प्रयास हो ही पहल चालू रखी ने सरकार विविध मंत्रालय अने विभाग द्वारा संचालित केंद्रीय कायदे में फौजदारी जोगवाई जी व्यापक समीक्षा के में सुधारे जे ही अगिया जे तबके में जाहिर ट्रस्ट जोगवाई में सुधारो बिल 2025 अगस्त 2025 जो लोकसभा में रजू करे में आयो हो ही बिल में 9 मंत्रालय द्वारा संचालित 16 जटले केंद्रीय कायदे में सुधारे जो प्रस्ताव रखे में आयो हो जिनमें कुल 355 जोगवाई हुई बिल रजू थे पोए उनके विगतवार तपास ला करे संसद जी पसंदगी समिति के हलाय में आ गयो समिति 49 जटली बैठक के ने 13 मार्च 2026 जो लोकसभा में पंड जो अहवाल रजू के अहवाल में प्रस्तावित सुधारे के वधु शुद्ध अने विस्तृत करे जी गलीमण करे में आवयु हुई पहले थी समाविष्ट 288 जोगवाई उपरांत समिति 62 अन्य कायदे में सुधारे जो पर प्रस्ताव रखे है समिति जी भलामणु अने संबंधित मंत्रालय अने विभाग साथे जी चर्चा जी आधार ते व्यवसाय करे जी सरलता अने जीवन जी सरलता के प्रोत्साहन बनेला सुधारे जो व्याप वधु विस्तारे में आयो सुधारेल कायदे के पब्लिक ट्रस्ट जोगवाई में सुधारो बिल 2026 तरीके मार्च 2026 में संसद में रजू करे में आयो हन थकी 23 मंत्रालय थे संचालित 79 केंद्रीय कायदे में सुधारो करे में आयो है जिनमें कुल 784 जोगवाई के आवरी गण में आवई है अन्यानो 717 के सरल बनाए में आवई हुई जबकि 67 जोगवाई जीवन जी सरलता के सुधारे जो हेतु जुड़ाई थी ही सुधारे द्वारा इस सुनिश्चित करे में अचे तो की रोजिंदे जीवन में थी जी सामान्य अथवा नंदी नंदी बोलेला कोई के पर फौजदारी कार्यवाही जो सामनो न करो पे इस सामान्य नागरिक कानूनी मार्को सरल अने न्याय बनाए तो अपने साथ ही फेरफार नंदी अथवा प्रक्रियागत बोलेला फौजदारी दंड के नागरिक वधु व्यवहारो अने सुलभ विकल्प साथ बदले तो जनते सुनिश्चित करी शकाजे तो के व्यवसाय कार्य के नियम जो पालन करे में नंदी नंदी बोलेला फौजदारी कार्यवाही जो सामनो न करनो पे ही बाबत जीवन जीवे जी सरलता अने व्यवसाय करे जी सरलता वोय में सुधारो करे जी ध्येय के वधु मजबूत बनाती हम रहते ही कायदो फौजदारी दंड दूर करीने तबक्कावार अमलीकरण पद्धतियों लागू करीने कायदे के वधु व्यवहारो अने संतुलित बनाए तो
1: આપણી સાથે ફોકિયા એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ કચ્છ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશન ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી મનીષ ફળકે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે મનીષ સર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે મનીષ ભાઈ સૌથી પહેલા ઉદ્યોગ જગતના જાણકાર તરીકે આ જે સુધારાઓ છે આર્થિક સુધારાઓ છે એને તમે કઈ રીતે મૂલ્યો છો
2: લગભગ આ ક્ષેત્રમાં સુધારાઓ થયા છે જે કે બહુ વ્યાપક રીતે આર્થિક સુધારાઓ કહી શકાય જેને કારણે જે વિકસિત ભારત 2047 નું એક સ્વપ્ન આપણી સામે મુકાયેલું છે અને કલેક્ટિવ કોલેબોરેશન સાથે કઈ રીતે આગળ વધી શકીએ એ વસ્તુને દિશા આપવા આ રિફોર્મ્સ હોય એવું માંગી રહ્યું છે આ રિફોર્મ્સ પ્રાથમિક રીતે talking about investment, energy. I mean, legal system has lagta aarthik sudharo dekhai chhe.
1: Sabse pehle aapne ema GST ki baat kar liye. Next generation GST reforms. Agar ek din aap GST sudharo. સામાન્ય માણસના જીવનને સુધારવા અને

સાથે સાથે કન્ઝ્યુમર્સ અને બિઝનેસ છે એ દરેક માટે એક

0: 10 telefon, çok az sayı sefer. Ortada bulunmayı kurduğu kadar mutlu ki ekro bırakmak sayı boyuna uçmuş. Kendi sayıları yani GST'yi kurduğundan kadar yapmayı yapmayacağı yani cinakaya etki sanat durur. Sayı kalan kalıp izok ve bilmezse kalıp kalıp kalıp kalıp kalıp kalıp
1: हमारे सरकार द्वारा अपना एक मोटी पहल लेबर पॉलिसी श्रम नीति नाम वर्ष चलावा आई है 2020 में जहाँ विविध ओलंपिक तथा श्रम कानूनों ने देखा कि ने चार लेबर कोड प्रसार किया था तो अभी भी काम में लगने पर लेबर कुछ है पर हमारे विषय शुभ भी मुझे
0: हमने चार लेबर कोड 25 नवंबर 2025 में सूचित कराया है नॉर्वे के फिंगर है.

Entonces, स्वास्थ्य के सवाल जो

0: इस चुनाव की स्थान नहीं दे सकती है।
1: सर,

5월 1일 목토 목까지 이제 목을 전에 5월째 목으로 있었네. 굉장히 이제 목으로 이제 목으로 있었던 있었네. 액체 인슈런스

इन्वेस्टमेंट मैंने जो है यूजर में सपोर्ट तो इन्वेस्ट के पास में ये हमको अपने को इस तरह के यूजर में सपोर्ट में हम लोग करो चें हमें एक न्यू फंड स्टार्टअप को सिस्टम में लगभग 10,000 करोड़ पहला की वो पे करो चें जहाँ आपको बहुत दिक्कत हो रही है ऐसा ना पीछे कि हमें स्टार्टअप में इको सिस्टम में पॉजिटिव करने वाले खासे में जो ऑलरेडी अत्यधिक दिखावा शुरू हो गया है।

Similarly, ક્ષેત્રે ઘણા વિવિધ દેશોમાં એક આપણે થઈ ગયા છીએ.

0: इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फोकिया ना मैनेजिंग डायरेक्टर निमिष फोके कार्यक्रम नु संचालन करियो अशरफ मथवाणी आ कार्यक्रम आकाशवाणी भूज समाचार विभाग द्वारा रजू करवामां आव्यो।
1: સવારના 11:30 થઈ રહ્યા છે। અમારા હવે પછીના તમામ કાર્યક્રમ અમદાવાદ

0: professor Makashwana Ahmedabad, Vadodara Kendra per te che non ha più.
1: Har ghar ki vani, Akashwani. Har dil ki vani, Akashwani. और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashwani.gov.in पर नया भारत नया आकाशवाणी
2: मेरे आएंगे चॉकलेट खूब लाएंगे घर अभी वो

क्षेत्र के पसार थयो। यूपीएससीए सिविल सर्विसेस प्रिलिमिनरी परीक्षा सीएसईनु परिणाम जाहिर कर्यु। डीआरडीओए स्वदेशी रीते विकसित

0: करने के लिए हमारे रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स पल-पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट aakashwani.gov.in पर नया भारत नया आकाशवाणी
1: બપોરનો એક થવા આવ્યો છે સાંભળશો દલિત પ્રસારિત હિન્દીમાં સમાચાર.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिक्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फिक्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारी में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, पुलिस में आयोजित भारत इनोवेट कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी, इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक

पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। भारत ने आग्रह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सिटाडेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ओमान में दरियाकांठे भारतीय जहाज एमटी सगीवाला पर हमला बाद 21 भारतीय क्रू सभ्यों सुरक्षित रीते परत फर्या। ओमान में मस्कत खाते भारतीय राजदूते बचावायेला क्रू सभ्यों साथ तेमना प्रस्थान अगाउ बातचीत करीने तेमने शुभेच्छाओ पाठवी हती। एम्बेसीए विदेश में भारतीय नागरिकों ने कल्याण और सलामती प्रत्ये की प्रतिबद्धता पुनरुच्चार कर एमटी सटेबेलो ओमान शहर में दरियाकांठे लगभग 30 नॉटिकल माइल दूर हो पर हमलो थो। आ घटना बाद ओमान मेरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर ने तात्कालिक जांच कराता ओमानी अधिकारी शोध और बचाव कामगी शुरू करी थी, जेमा 21 भारतीय क्रू सभ्यों ने सफलतापूर्वक बचावी लेवाया था, जारी आ दुखद घटना में 3 नागरिकों जीव गुमाव्या था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद नु विस्तरण फक्त बिनकायमी सभ्यपद पूरत मर्यादित रहे तो तेमा सुधारा प्रयासों निष्फल थवानी भारते चेतवनी आपी छे। संयुक्त राष्ट्र में भारत में कायमी प्रतिनिधि पी हरीशे सुरक्षा परिषद सुधारा पर आंतर सरकारी सलाहकार बैठक में आ निवेदन आप्युं हतुं। तेमणे जणाव्युं कि सुरक्षा परिषद में जरूरी सुधाराओ प्राप्त करवामां फक्त बिनकायमी सभ्यनी संख्या में वधारो अपूरतो अने असफल रहेशे। तेनाथी हालमा 5 कायमी सभ्योनी निर्णय लेवानी शक्तिना माळखामां मूलभूत फेरफार थशे नहीं।
1: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे
2: हैं।
0: ईरान अने अमेरिका वच्चे संधिनी शक्यताओने लईने वैश्विक बजारोनी साथे साथे भारतीय शेर बजारोमां पण तेजीनो माहोल सर्जायो छे। आजे सतत त्रीजा सत्रमां शेर बजार वधारा साथे खुल्यो हतो। प्रारंभे 350 अंकना वधारा साथे खुलेला मार्केटमां हजु पण तेजीनो माहोल यथावत छे। आईटी सेक्टरनी आगेकूचना पगले सेन्सेक्समां 400 अंकोनो अने निफ्टीमां 90 पॉइंटना वधारा साथे कारोबार थई रह्यो छे। फीफा वर्ल्ड कपमां केपवर्डे अने स्पेन वच्चेनी मैच 0-0 गोल साथे ड्रॉ गई। दरमियान ग्रुप जी नी पहली मैचमां ईरान अने न्यूझीलेंड वच्चेनी मैच पण 2-2 थी ड्रॉ थई हती। कैलिफोर्निया लॉस एंजलस स्टेडियम खाते रमायेली आ मैच रोमांचक रही हती। बीजी मैचमां बेल्जियम अने इजिप्त वच्चेनी ग्रुप जी नी पहली मैच 1-1 थी ड्रॉ गई। साउदी अरेबिया अने उरुग्वे वच्चे ग्रुप एच नी पहली मैच आजे अमेरिकाना मियामी स्टेडियम खाते 1-1 थी ड्रॉ गई। साउदी अरेबिया माटे अब्दुल्लाह अल अमरीए 41 मिनिटे रिबाउंड थी गोल कर्यो, जारे उरुग्वेना मेक्सी अराउजोए 80 मिनिटे बराबरी करी हती। न्यूझीलेंडना ऑकलेंडमां रमाई रहेली एफआईएच हॉकी नेशन्स कपनी सेमीफाइनलमां भारतीय महिला टीमे प्रवेश कर्यो छे। भारते बीजा पूल ए मैचमां जापानने 2-1 थी हराव्युं। अमेरिका अने जापान सामेनी जीतथी 6 पॉइंट साथे पूल ए मां जीतथी भारत टोच पर पहोंच्यो छे। आगामी गुरुवारे टूर्नामेंटना छेल्ला पूल ए मैचमां भारतनो मुकाबलो उरुग्वे सामे थशे, जारे जापान अने अमेरिका पूल ए माथी बीजी सेमीफाइनलमां स्थान मेळवा माटे टकराशे। दरमियान पुरुषोनी हॉकीमां भारत नेधरलेंडना रोटरडेममां एफआईएच हॉकी प्रो लीगमां जर्मनीनो सामनो करशे। શ્રીલંકામાં ચાલી રહેલી ત્રિકોણીય શ્રેણી માટે ઇજાગ્રસ્ત યુદ્ધવીર સિંહને સ્થાને ઝડપી બોલર અશોક શર્માનો ભારત એ ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। બોલિંગ કરતી વખતે યુદ્ધવીરને જમણા ખભામાં ઇજા થઈ હતી અને ફિલ્ડિંગ સેશન દરમિયાન પણ દુખાવો થયો હતો। ભારત એ ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં સતત 2 મેચ અફઘાનિસ્તાન એ અને યજમાન શ્રીલંકા એ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે। ભારત એ આવતીકાલે અફઘાનિસ્તાન એ સામે ટકરાશે। અંતમાં મુખ્ય સમાચાર ફરી એકવાર। જી 7 સમિટમાં ભાગ લેવા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સ્લોવાકિયાથી ફ્રાન્સ જવા રવાના। આધાર કાર્ડના નાગરિકતા અને સરનામાના પુરાવા તરીકે દુરૂપયોગને લગતી અરજી પર કેન્દ્ર અને રાજ્ય પાસેથી સર્વોચ્ચ અદાલતે જવાબ માંગ્યો। નીટ યુજીની પુનઃ પરીક્ષા અગાઉ સરકારે 22 જૂન સુધી સોશિયલ મીડિયા એપ ટેલિગ્રામ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો। અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ વિરામ બાદ સલામત રીતે બહાર આવેલું ભારતનું પ્રથમ વાણિજ્યિક જહાજ દિશા 18 જૂને ગુજરાતના દહેજ બંદરે પહોંચશે। સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદનું વિસ્તરણ ફક્ત બિનકાયમી સભ્યપદ પૂરતું મર્યાદિત રહેશે તો સુધારાના પ્રયાસો નિષ્ફળ નિવારવાની ભારતની ચેતવણી। અને ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેની સંધિની વધતી શક્યતાઓના પગલે ભારતીય શેર બજારમાં સતત ત્રીજા સત્રમાં તેજી। આકાશવાણી પરથી સમાચાર પૂરા થયા હવે પછી 2:30 પ્રાદેશિક સમાચાર સાંભળી શકશો।
3: actually

दोस्तों, जय भारती कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान और साथियों को फिल्म का नाम बादशाह हो।

आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था बद्री की दुल्हनिया। आइए आप सुनते हैं मुबारकान फिल्म का ये गाना, मीका सिंह और प्रकृति का।

अमित मिश्रा, शिल्पा राव और साथियों की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये दिल है मुश्किल फिल्म का ये गाना। इसके साथ ही आज का यह भारतीय कार्यक्रम संपन्न होता है। आगे दीजिए जय जवान।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियोन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश और संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में

0: संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवो में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमे विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों के विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
1: जी जागृति, आपने वास्तविक परिदृश्य में आ रहे हैं जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। जैसे अगर आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसे कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
0: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
1: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्व

0: ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिक्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फिक्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ज्यादा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सुप्रीम, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन ए आई आर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
2: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
0: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना

0: शिक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसी अब वैध रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर माईगॉव की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: जानकारी आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आग्रह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
1: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों के निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सिटेडेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 77,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी एशियंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। एआईआर चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंध्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्य से जवाब मांगा। और भारत में महिला एफआईएच नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार। सत्यापन बोलें छदशांश मीटर से। अत्यारे सांजना पांचता वाव्याशी अमारी बीजी सभानु प्रसारण शुरू थाय छे। प्रारंभ समय शो दिल्ली थी प्रसारित हिंदी मां समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिन की यात्रा पर फ्रांस के इवियन शहर पहुंच गए हैं। इवियन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि भारत अधिक टिकाऊ और समृद्ध ग्रह के लिए सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले श्री मोदी इवियन जाने के लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा पहुंचे। हवाई अड्डे पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पेमालिन ने उनका स्वागत किया। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की यह लगातार सातवीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज शाम प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत करेंगे। इसके बाद श्री मोदी नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना विषय पर एक उच्च स्तरीय सत्र में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क पानी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। दोनों नेता पारस्परिक हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया है। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आकांक्षाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिसे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अरे सिकंदर, तू अत्यारे दरिया जाय छे?
3: अरे ना भाई ना, मने खबर छे के मानसून ब्रेक दरमियान दरिया न जवाय, माछीमारी न कराय।

महका महका आंचल हल्के हल्के गिर जाते हो तो पलकों से मल के।

0: यात्रा छेड़े छल्ला 4 वर्ष के विकास में समर्पित यशस्वी वहा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ना नेतृत्व ने 4 वर्ष विश्वास ना विकास ना जन कल्याण ना सफर छे मां नर्मदा थी जल समृद्ध थती धरान स्मार्ट सिटीज थी दुनिया में चमकती आधुनिकता बुलेट ट्रेन अने वंदे भारत की गतिशीलता थी लखाता एक नवा भविष्य में अने गगन नाम का भारत ना आत्मविश्वास में 4 वर्ष की यात्रा छे गुजरात में अंत्योदय अने गरीब कल्याण सेवा अने सुशासन पीएम आवास हर घर जल किसान सम्मान अने आयुष्मान कवच थी मजबूत थता जन जन ना आत्मविश्वास ने अने हवे तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल ना प्रयासों थी देश नु ग्रोथ इंजीन गुजरात बनी रहो छे ग्रीन एनर्जी अने भविष्य नी आधुनिक टेक्नोलॉजी नु पावर हाउस
1: સાંભળી લતા મંગેશકર અને મુકેશે ગાયું રંગોલી ફિલ્મ ગેટ.

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिसे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अरे भाई, क्या सांभू, आपने दरिया में होइए तो आ इंटरसेप्टर बोट अपनी अने देश की रक्षा करे छे।
3: गुजरात राज्य ना दरिया किनारे कुल 27 इंटरसेप्टर बोट अपनी सुरक्षा माटे दरिया में सतत पेट्रोलिंग करे छे। अने आपने पण तपास दरमियान जरूरी दस्तावेजो अने साची माहिती आपी तेमने संपूर्ण सहकार करवो जोईए। आपने दरिया ना के किनारे अजाणी बोट व्यक्ति के शंकास्पद हिलचाल देखाय तो तरत ज 1093 पर कॉल करी मरीन पुलिस ने जाण करवी जोईए। अपनी सजगता अने तकेदारी आपनी दरियाई सुरक्षा नी खातरी। गुजरात मरीन पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: कोई बहुत कार्यक्रम में हवे सामने शो लता मंगेशकर अने किशोर कुमार गायलू। मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म गई।

रोहित कुमार बारोटे गयेला लोकगीत साथे ज आजनो लोकसंगीत नो कार्यक्रम समाप्त करीए छे। आकाशवाणी अमदावाद वडोदरा बराबर 6:15 आप सांभळशो सिंधी मां समाचार।

नमस्ते, हीअ आकाशवाणी आहे। हाणे पहिरीं महिल खुपरनाणी खां ख़बरूं ॿुधंदा। सभ खां अवल मुख्य ख़बरूं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अॼु शाम फ्रांस जे एवियन में मुंतज़िम G7 शिखर सम्मेलन में भाग वठंदो। प्रधानमंत्री मोदीअ ब्रैटिस्लावा में वाराणसी ते मर्कोस नुमाइश जी साराह कई। लाॻापन खे मज़बूत करण में कला ऐं संस्कृतीअ जी भूमिका ते बल ॾिनो। नीट UG ॿीहर इम्तिहान खां अॻु सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ते 22 जून ताईं पाबंदी मड़ी। मैसेज एडिटिंग फीचर सहूलियत 30 जून ताईं बंदि रहंदी। में जापान खे शिकस्त ॾेई सेमीफाइनल में दाख़िल। हाणे ख़बरूं तफ़सीलवार ॿुधंदा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीअ G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करण वास्ते 2 ॾींहनि जे दौरे ते फ्रांस जे एवियन शहर पहुतो आहे। एवियन पहुचण खां पोइ प्रधानमंत्री सोशल मीडिया ते हिक पोस्ट में चयो त हू विश्व जे अॻवाननि सां ॻाल्हि ॿोल करण ऐं मुख्य आलमी मुद्दनि ते वीचारनि जी ॾे वठि करण जे लाइ ख़्वाहिशमंद आहे। हुन साहिब चयो त भारत वधीक टिकाऊ ऐं खुशहाल ग्रह जे लाइ गॾियल कोशिशुनि खे अॻियां वधाइण वास्ते वचनबद्ध आहे। ध्यानु ॾियारियो त G7 शिखर सम्मेलन काल्ह खां शुरू थियो आहे। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदीअ जी लगातार इहा 7वीं मौजूदगी आहे ऐं इन मंच ते भारत जी 3रीं हिसेदारी आहे। गौरतलब हुजे त शिखर सम्मेलन में भारत जी लगातार मौजूदगी अहम आलमी ललकारुनि खे मुंहुं ॾियण ऐं अमन चैन, सलामती, मुसलसल तरक्की तोड़े आर्थिक विकास खे ओज ॾियण जे मक़सदु

0: असां थींदड़ अंतर्राष्ट्रीय कोशिशुनि में योगदान ॾियण में भारत जे वधंदड़ किरदार खे ॾेखारे थो। इहो शिखर सम्मेलन भारत जे लाइ अञा पिण अहमियत भरियो आहे, छो जो प्रधानमंत्री मोदी आलमी मंच ते ग्लोबल साउथ जो आवाज़ ऐं चिंताउनि खे बुलंद करे सघे थो। फ्रांस जो राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रोन अॼु शाम जो प्रधानमंत्री मोदीअ जो रस्मी स्वागत कंदो। इन बैदि श्री मोदी नई भाईवारियूं बढ़ाइण ऐं अंतर्राष्ट्रीय यकमुश्ताई जो ॿीहर निर्माण करण विषय ते उच सतही कार्य इजलास में भाग वठंदो। इन इजलास में G7 मुल्कनि जा नेता, साथी मुल्कनि जा नेता ऐं विश्व बैंक तोड़े अफ्रीकी विकास बैंक जा बर्क एवज़ी शामिल थींदा। शिखर सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैनेडा ऐं ब्रिटेन जे प्रधानमंत्री तोड़े UAE जे राष्ट्रपतिअ सां गॾु भाइमी बैठकूं कंदो। अॼु राति जो श्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रोन पारां मुंतज़िम शानदार दावत में शामिल थींदो। प्रधानमंत्री मोदीअ जी इन यात्रा दौरान हिकु अहमियत भरियल कार्यक्रम सुभाणे अमेरिका जे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सां गॾु हुन जी मुलाक़ात रहंदी। वणिजे थो त ॿई अॻवान मुख़्तलिफ़ खितनि में ॿितरफ़ी सहकार खे वधीक मज़बूत करण वारनि तरीक़नि ते चर्चा कंदा ऐं आपसी मुफ़ाद जे अहमियत भरियल इलाक़ाई ऐं आलमी वाक़नि ते पिण तबादले ख़्याल करे सघनि था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ चयो आहे त कला ऐं संस्कृतीअ में माण्हुनि खे वेझो आणण जी ताक़त आहे। इहा ॻाल्हि हुन काल्ह स्लोवाकिया जे ब्रातिस्लावा में राष्ट्रपति भवन में मुंतज़िम वाराणसीअ ते मरकोज़ नुमाइश बैदि चई, जंहिंमें स्लोवाकिया जे कलाकारनि जूं कलाकृतियूं पिण शामिल हुयूं। प्रधानमंत्री मोदीअ इन खे ब्रातिस्लावा खां बनारस जो जुड़ाव सॾाईंदे स्लोवाकिया जे कलाकारनि पारां वाराणसीअ जे रचनात्मक पेशकश जी साराह कई। राष्ट्रीय तैलीम एजेंसी NTA ॿुधायो आहे त ईंदड़ नीट UG ॿीहर इम्तिहान जे लाइ गुज़िरियल 24 कलाकनि में 10 लख खां पिण वधीक उमीदवारनि पंहिंजा एडमिट कार्ड डाउनलोड कया आहिनि। ॿीहर इम्तिहान 21 जून ते थियण वारो आहे। इन विच में शफ़ाफ़ियत वधाइण ऐं पेपर लीक जे इम्काननि खे ख़तम करण जे लाइ सरकार 22 जून ताईं टेलीग्राम एप्लीकेशन ते ऑनलाइन संदेश मोकिलण ते रोक मड़ी आहे। NTA चयो आहे त इहा पाबंदी नीट ॿीहर इम्तिहान जे ॾींहं ताईं लागू रहंदी। एजेंसीअ चयो आहे त टेलीग्राम खे 30 तारीख़ ताईं अवल खां पोस्ट कयल संदेशनि जे एडिटिंग जी सहूलियत खे पिण बंदि करण जूं हिदायतूं ॾिनी वयूं आहिनि। ही ख़बरूं तव्हीं आकाशवाणी तां ॿुधी रहिया आहियो। ही ख़बरूं तव्हीं असांजी यूट्यूब चैनल एयर न्यूज़ गुजरात ते पिण ॿुधी सघो था। वधीक ख़बरुनि जी तफ़सीलीअ जे लाइ तव्हां असांजी वेबसाइट newsonair.gov.in खे फॉलो करे सघो था। सरकार दवा साज़ी कानून 1945 में तरमीम पधरी कई आहे। इन में ॻोठनि में कफ सिरप जे विक्रे ते ॾिनल छूट खे वापसि वरितो वियो आहे। हाणे ॻोठनि में कफ सिरप जो विक्रो ऐं विर्छ सिर्फ़ क़ाइदेसर लाइसेंस हासिल थियल फार्मेसियुनि ज़रिए कई वेंदी। पेश आहे हिकु रिपोर्ट।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियमकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सुप्रीम कोर्ट अॼु मर्कज़ ऐं राज्यनि खां हिकु दरख़्वास्त ते जवाब तलबियो आहे। इन में पनत मड़ी वई आहे त भारतीय ख़ासि सुञाणप इख़्तियारीअ पारां जारी आधार कार्ड जो गैर इस्तेमाल नागरिकता, रिहायशी जाइ, रिहायशी हंध जे पते जे रूप में कयो पियो वञे। दरख़्वास्त में इहा हिदायत ॾियण जी घुर कई वई आहे त इन जो इस्तेमाल सिर्फ़ सुञाणप जी तस्दीक ताईं महदूद रखियो वञे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला चयो त मुख़्तलिफ़ सकाफ़तुनि ऐं जाग्राफ़िकल सूरत हाल जे बावजूद विश्व जी सभ खां वॾी आबादीअ वारो भारत आजादी का कोई वदंदर अवामी बांगे भाईवारी सा विश्व जो सब का वो लोकतंत्र बणजी उसरो है। नई दिल्ली में मुंतजन तरक्की याफ्त भारत युवा संसद 2026 के उम्मीदवार से गालबोल में हुन चयो त 50 लख का पण वधिक नौजवान अज युवा संसद से जुड़ल आहिन।
2: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क

0: सेहत सलामती काउंसिल जो विस्तार सिर्फ गैर गहना मेंबरशिप ताई महदूद रखियो वियो त इन में सुधार जो कोशिशों नाकाम थी सघन थियूं। मुता जमायत में भारत के दायमा एजी हरीश पर्वत थानेनीय सलामती काउंसिल में सुधारन ते अंतर सरकारी सलाह मसलत की वारी बैठक में यह गाल चई।
1: यूएनएससी रिफॉर्म वुड बी ग्रॉसली इनएडिक्वेट।
2: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से

0: एक्चुअली इनएडिक्वेट।
1: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।

से बन चिकित्सक सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियन शहर पहुंच गए हैं। एवियन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की यह लगातार सातवीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। एवियन इस समय सम्मेलन का आउटरीच सत्र चल रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टोमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में आज अमरीका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने का प्रयास किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जा रही सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी अब यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UGC परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता को बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेशों को भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने राष्ट्रीय अधिनियम 1945 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। इसमें गांवों में अब कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट को वापस ले लिया गया है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकी कार्य है जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर ही किया जाएगा। दार्जिलिंग के कुर्सियांग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री छाया श्रमिक योजना के अंतर्गत दार्जिलिंग पहाड़ियों और तराई डुवर्स क्षेत्र में बंद पड़े 25 चाय बागानों को फिर से खोलने के प्रयास किए जाएंगे। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल समझौते को अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इसराइल की अपनी प्राथमिकताएं हैं और वो लेबनान में बफर जोन में तब तक बना रहेगा जब तक आवश्यक होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल होंगे आमने सामने। मैच भारतीय समय अनुसार

0: संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ भगत भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं भगत भारती देश के सुरीली धड़कन।

आज के हवा महल कार्यक्रम में झलकी आप सुन रहे हैं जीव की तपस्या, लेखिका डॉक्टर कुमारी, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।

0: आज आई तुम्हें स्कूल से, देखो तो कैसा मुंह सूख जाता है बेचारों का शाम तक। माँ खूब भूख तकलीफ लगी है। भूख तो लगी ही होगी रानी बेटी को, आज तो तेरी पसंद की चीज बना कर रखी है मैंने, बेसन के लड्डू।
1: सच में?
0: माँ मुझे भी खाने के लिए बहुत भूख लगी है।
1: बेसन के लड्डू तो बना लिया मैं।
0: अरे ये लोग इतना दिन से पीछे पड़े थे, मैंने सोचा बना ही डालू। तुम लोग एक दो लड्डू खाकर पानी पियो, तब तक मैं गरम गरम पराठे उतार देती हूँ।
1: ये तो आज फिर पानी पड़ेगा तो तुम बंद
0: क्यों हुआ?
1: अरे
0: आज फिर तुम लड्डू खाओ,
1: मैं तो तंग आ गई।
0: ये आखिर तमाशा क्या है?
1: परसों गाजर का हलवा बना के रखा था वो कोई खा गया, कल ढेर सारे शक्कर पारे कोई खा गया, और आज बेसन के लड्डू।
0: विनोद तुम्हें लड्डू खाए हैं?
2: अरे मैं सीधा तो स्कूल से आ रहा हूँ, मैंने तो सूरज भी नहीं देखी लड्डू की,
1: और मुझे तो मालूम नहीं था कि आज बेसन के लड्डू बनने आने हैं।
0: मैंने भी नहीं देखा।
1: विनोद सच सच बताना,
0: नहीं तो ऐसी शिकायत करूंगी जब तक ठिकाने आ जाएगी।
1: बस तुम्हें खाए हैं लड्डू?
0: मेरे ऊपर क्यों शक करती है माँ?
1: मैंने नहीं खाए तुम्हारे लड्डू।
0: तुमने नहीं खाए?
1: जैसे भूत प्रेत खा गई ना, इसीलिए खाए होंगे माँ।
0: मीठे का तो ऐसा चीटा है चीटा कि खीर के बर्तन में चिपकता है,
1: जैसे उसे में शहीद हो जाएगा।
2: देखो मिया दीदी, झूठे नाम मत लेना, मैं तो अभी तुम्हारी पोल खोल दूंगा।
1: अरे जा,
0: क्या पोल खोल दे?
1: बड़ा आया है
0: पोल खीर के बर्तन में दूध मिलने जा रहा है,
1: दूसरे आए लड्डुओं के दीवाने
0: यही खा गया होगा।
1: ऐसा हाथ से निकले है वो लड़का,
0: मैं तो माँ बाप का ख्याल और मैं छोटे भाई बहनों का ख्याल,
1: जम गए होंगे सारे लड्डू अपना बैठ कर रहे की तरह,
2: इसीलिए इतना खुश है।
0: लड्डू कैसे?
1: भाई खाए तो नहीं,
0: लेकिन अगर बनाऊंगा तो जरूर खाऊंगा, और यहाँ की ही तो रखाऊंगा।
1: क्यों माँ किस चीज के लड्डू बनाएंगे?
0: बेसन के।
1: हाँ हाँ बेसन के
0: बना के रखे थे, और पेट का खा गया लड्डू को।
1: माँ कहीं बिल्ली तो नहीं खा गई?

0: 还会吃不能玩呢。哎，我不吃不吃不，我们来给你看看，看看看看，大家给你看看。
1: महाभारत में चल रहा है। अरे आखिर क्या कुछ नहीं है।

आज कल के लड़के बदल छापक हो गए हैं।

Oh,

जीव की तपस्या झलकी आपने सुनी। लेखिका डॉक्टर कुमारी, इसका निर्देशन किया स्वतंत्र कुमार ओझा ने। आकाशवाणी इंदौर की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: अर्थात स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। पहले लीवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाएंगे तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव।

0: सो गए तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जब मैंने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत,
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

चिट्ठियों कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की पहली पेशकश ये जवानी है दीवानी फिल्म से टोची वाला और रेखा भारद्वाज के स्वरों में अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत की धुन बनाई है प्रीतम ने।

बद्री की दुल्हनिया रिजर्व सुनिए फिल्म का गीत आवाजें देवी नेगी, दीप नेगी, मोनाली ठाकुर और नेहा कक्कर की आवाजों में। संगीत तैयार किया है तनिष्क बागची ने, बोल है शब्बीर अहमद की।

0: जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: बंगाली के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रही है। वो जो घुटन है उस घुटन को बंगाली के गंधार में जब तक नहीं लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुनो के अलौकिक संसार में ले जाती है। पंडित रोनू मजुमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ भगत भारती पर।
2: अब सुनिए प्रीतम के संगीत निर्देशन में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत, आवाज अरिजीत सिंह की फिल्म का नाम ए दिल है मुश्किल।

छत्रों कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए अभिजीत और श्रेया घोषाल को फिल्म मैं हूं ना में। जावेद अख्तर ने बोल लिखे हैं, संगीत तैयार किया है अनु मलिक ने।

不及我忍吃和小风给买回来了。이집스미이집스아라샤밤और अल्तमास को फिल्म राबता में अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत की धुन बनाई है जावेद ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविलॉन में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टर्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी जो भविष्य के लिए परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in।

0: फूड से मिल सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीडीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की यह पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्यकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्व गणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि यह दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।

0: सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
1: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
2: भारत में मजबूती स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
0: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
3: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहाँ से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहाँ से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारे वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCN के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमरीका ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस ने G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्यसत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akash Rani and I'm Sairam Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in a high-level working session at the ongoing G7 summit in Evian, France today. The session themed, Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, brought together leaders of the G7 nations, partner countries and senior representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting began shortly after French President Emmanuel Macron formally welcomed Prime Minister Modi and other participating leaders. Following a group photograph, PM Modi shared the picture on social media, stating that India and the G7 countries would continue to work closely to promote global prosperity, sustainability and human well-being. Our correspondent Ankit Kumar, who is covering the Prime Minister's G7 visit, joins us live from Evian for the latest updates. Well, Ankit, what are the key outcomes India expects from G7 discussions?
6: Yes, Saira. India is looking at this G7 summit as an important opportunity to advance both its national interest as well as priorities of the Global South. From India's standpoint, one key outcome would be deeper cooperation in areas such as trade, technology, innovation and resilient supply chains, particularly at a time when countries are seeking reliable economic partners. Another important area is collaboration on emerging technologies, including artificial intelligence, where India is increasingly playing a significant role in global discussions. At the same time, India is expected to push for greater international focus on issues that directly affect developing nations, including sustainable development, climate finance, energy security, and inclusive economic growth. The summit also provides an opportunity for India to strengthen bilateral partnerships with major economies on the sidelines. Saira.
5: Well, thanks, Ankit, for those updates. Moving on, earlier in the day, Prime Minister Modi reached Evian on a two-day visit to attend the summit, which commenced yesterday. In a social media post after his arrival, the Prime Minister said that he looked forward to engaging with world leaders and exchanging views on key global issues. He added that India remains committed to advancing collective efforts towards a more sustainable and prosperous planet. On the sidelines of the summit, the Prime Minister is scheduled to hold bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, UK Prime Minister Keir Starmer and President of UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later this evening, he will attend a gala dinner to be hosted by President Macron. A key engagement during the summit will be PM Modi's meeting tomorrow with US President Donald Trump. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen bilateral cooperation across a range of sectors, besides exchanging views on important regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today held a high-level agriculture review meeting in New Delhi and conducted a detailed review of preparations across the country for the Kharif 2026 season. The Agriculture Ministry said in a statement that in the context of possible El Nino conditions, he placed special emphasis on increasing cotton production, achieving self-reliance in pulses, and advanced contingency plans for low rainfall districts. Our correspondent has filed this report.
7: The Agriculture Minister gave a clear message that protecting farmers' interest is the government's top priority under the guidance of Prime Minister Narendra Modi. The meeting focused on ensuring that all necessary steps are taken well in advance to safeguard agriculture and farmers from any adverse weather conditions that may arise during the season. Mr. Chauhan gave clear directions that full preparations should be made in advance in those districts where there is a possibility of low rainfall or uneven rainfall. He said that

0: 交通リレーショー。आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा प्रादेशिक समाचार विभाग रजू करे छे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ना 12 वर्ष ना सफल कार्यकाल अंगे विशेष श्रेणी 12 वर्ष सुशासन ना जे अंतर्गत आज ना अंक मा आपणे सांभळशुं भारतीय रेलवे विकास नी नवी सफर अंगे विशेष चर्चा चर्चा मा भाग लई रह्या छे पश्चिम रेलवे अहमदाबाद ना डिविजनल रेलवे मेनेजर वेद प्रकाश अने आकाशवाणी अहमदाबाद ना संवाददाता अपर्णा खूंट।
1: નમસ્કાર શ્રોતા મિત્રો, આકાશવાણી અમદાવાદ દ્વારા પ્રસ્તુત આજના કાર્યક્રમમાં હું અપર્ણા આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। 12 વર્ષ સેવાના આ શ્રેણી અંતર્ગત આજના કાર્યક્રમમાં આપણે વાત કરીશું એક એવી પરિવહન સેવાની જે ભારતને જીવાદોરી ગણી છે। જી હા શ્રોતા મિત્રો, આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ ભારતીય રેલવેની। છેલ્લા એક દાયકામાં રેલવેએ માત્ર પોતાની ઝડપ જ નથી વધારી પરંતુ એક નવી ઓળખ પણ બનાવી છે અને આધુનિકતાના માપદંડોને પણ નવા આયામ આપ્યા છે। રેલવેની આ પરિવર્તનકારી યાત્રા અંગે ચર્ચા કરવા આજે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં જોડાયા છે અમદાવાદ મંડળના મંડળ રેલ પ્રબંધક વેદ પ્રકાશજી। સર, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપનું આકાશવાણીના સ્ટુડિયોમાં। સર, છેલ્લા 12 વર્ષોમાં ભારતીય રેલવેની કાર્ય સંસ્કૃતિ, યાત્રી સેવાઓ બધામાં જ એક અમૂલ પરિવર્તન આવ્યું છે, તો આપ આ યાત્રાને કેવી રીતે જુઓ છો? શું કામ છેલ્લા 12 વર્ષમાં થયું છે રેલવેમાં?
2: पैसेंजर्स को वैलिड होती है। इसका मतलब अगर हम कंप्लेन करें ऑस्ट्रेलिया महादेश जो है उसके टोटल पॉपुलेशन को डेली ट्रेन पर ले जाती है। तो ये जीवन रेखा, जैसे आपने कहा, सबको जीवन रेखा है। और विगत जो 2014 के बाद जो है 12 साल का जो टेन्योर है उसमें अमूल चूर परिवर्तन हुआ है, चाहे वो स्टेशन का डेवलपमेंट हो। इंडिया के पूरे इंडियन रेलवे में 8 स्टेशन है, हर स्टेशन में कुछ न कुछ चेंजेस तो हुए ही है, लेकिन जिसे हम अमृत स्टेशन कहते हैं वो 1300 स्टेशन में डेवलपमेंट का काम चल रहा है। कुछ का तो इनोवेशन हो चुका है, कुछ कंप्लीट है और कुछ कंप्लीट होने की में है। तो हर छठा स्टेशन पूरे इंडियन रेलवे का वो फिर से रिवाइव हो रहा है, फिर से ये डेवलप हो रहा है। तो ये आज तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड का स्टेशन डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। डिफरेंट कंट्रीज से जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, वो एक या दो स्टेशन एक डिकेड में करती है। और हमने लिया है जो संकल्प वो 1300 स्टेशन के डेवलपमेंट का।
1: बिल्कुल सर, रेलवे में जो आ कायापलट है ये मात्र देखने नहीं परंतु यात्रियों प्रत्ये में एक बदलाव संवेदनशीलता कार्यशैली में परिणाम है। અને સફરની સૌથી આકર્ષક જો કોઈ કડી હોય તો એ વંદે ભારત અને નવો ભારત કેન્દ્ર છે। આ આધુનિક અને ઝડપી રેલવેની એક નવી શરૂઆત આજે ભારતમાં થઈ છે, જે નિશ્ચિત રૂપે આપણે કહી શકીએ કે વૈશ્વિક કક્ષાની છે। તો છેલ્લા 5 વર્ષમાં આ આધુનિક રેલવેનો વ્યાપ જે છે એ કેવી રીતે વધ્યો છે?
2: ऐसे कोचेज लाल रंग के डिब्बे आप हर कोई हर सुपर रंग देखे होंगे कि जो कोचेज थे पहले लाल रंग के होते थे, पुराने डिब्बे थे, इसको ICF कोचेज करते थे। ये जर्मन की टेक्नोलॉजी थी पुरानी 1930 की, उसको हम कब तक बोल रहे थे 2022 तक चलता रहा है। उसके बाद फिर आया LSB कोचेज का। तो ये टेक्नोलॉजी जो है 1970 की है यूरोप की, और 1970 की टेक्नोलॉजी हम अभी इम्प्लीमेंट कर रहे थे। जब पीएम साहब ने हमें चैलेंज दिया कि भाई आपको अपनी टेक्नोलॉजी बनानी है, ट्रेन से बनाना है, और हमें 2016 में यह चैलेंज दिया गया कि 2018 में आपको बाइक दिखाना है। तो जो पहले जिसे हम नवे भारत बोलते हैं ट्रेन से, उसका नाम दिया गया ट्रेन 2018 के हिसाब से वो चैलेंज मिला था। रेलवे ने पूरा डिले करके बनाया 2019 में जनवरी में पहली नवे भारत ट्रेन का इनोग्रेशन पीएम साहब ने किया, जो कि नई दिल्ली से बनारस और नई दिल्ली से जम्मू के लिए स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इतना डेवलप किया उसको कि उस ट्रेन सेट को हम लोगों ने नॉर्मल सिस्टम में लेते हैं। अब LHB का प्रोडक्शन कम हो गया, ICF के कोचेज करीब करीब खत्म होने पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। LHB के कोचेज हैं क्योंकि उसका सेंट्रलाइज होता है, वो चलेंगे, लेकिन जो ट्रेन सेट का कॉन्सेप्ट जो वर्ल्ड ओवर चेंज हुआ है उसमें अभी तक आप बता दें कि 164 सर्विसेज चल रही है ट्रेन सेट की, इंडिया के हर कॉर्नर में हर डायरेक्शन में चल रही है। अगर उसको मैप में देखा जाए तो वही है कि भारत माता का पूरा आम है, लिंग है, सर है, पैर है, जम्मू कश्मीर से लेकर के केरला कन्याकुमारी से लेकर के गुवाहाटी पूरे का पूरा उखा और हर कॉर्नर हर स्टेट को कवर करता है। और इसके साथ साथ ये तो हुआ जो एक डिस्टेंस में चलने की एक है जो कि बड़े शहरों को छोटे शहरों से मिला करके ग्रोथ पूल का जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का उसको करने के लिए नमो भारत रैपिड रेल का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। उसी के तहत मेरठ से दिल्ली का, जैसे कि अहमदाबाद से भुज का, जैसे कि दरभंगा से लेकर के पटना का, तो ये कॉन्सेप्ट आया है जिसमें कि 2000-3000 लोग आराम से एसी में बैठ करके सफर करते हैं और सुबह चलते हैं और सुबह 6 बजे चले 8 बजे पहुंच गए, अहमदाबाद में काम किया, आपको लाटे घर को चले गए। तो ये

0: से जोड़ करके एक दूसरे में समन्वय बैठाना। इसके अलावा ये दोनों ऐसी है, हमारी जो मास चल रही है, जो जनता चल रही है, वो नॉन एसी में चल रही है, उसके लिए भी बहुत जोर शोर से काम किया गया और अमित भरा ट्रेन का उसकी व्यवस्था की गई। अमित भरा ट्रेन में क्या होता है, बाईस कोच की ट्रेन होती है, एसबी है जो पुराना लेकर उसे को हमने चेंज किया, उसके आगे कुछ इंजन लगा दिया गया। कई बार अवसर हो तो समय का समय इंजन करता है, जाता है, पीछे रेडी करता है, तो वो चलना स्टार्ट कर दे। दूसरा कि 11 कोचेज उसके स्लीपर के हैं और 11 जनरल के हैं, सारे के सारे कोचेज के कंडीशन आप देखोगे तो सफाई होगी कि राजधानी के कोचेज उसके बराबर है। तो जो हमारी जनता जो चल रही है, जो कि स्लीपर में भी चलने वाली है, जो कि जनरल क्लास में भी चलने वाली है, उनको वही लुक, वही फैसिलिटी जो कि राजधानी में मिलती है, वही फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही है। और इसमें जितने भी लोग जाए उसमें प्रेशर नहीं होता, आसानी से लोग जा सकते हैं।
1: आज जरा आप आधुनिक झड़पी ट्रेन की बात करी रहा है, तरह बुलेट ट्रेन की बात चौक्स आए थे, बुलेट ट्रेन स्वप्न पर हम वास्तविकता बनी रही है, थोड़ा वर्षो में अपने मिली है, तो शू कहो सर, अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट नु काम हाल क्या तबके है, गुजरात न आर्थिक परिप्रेक्ष्य थी जुड़ा जाइए तो केव रीते आने फायदा समग्र गुजरात में मिलवा।
0: बुलेट ट्रेन परियोजना एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था और आपको विश्वास नहीं होगा कि जहाँ से हम ये हेल्प ले रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी आ रही है, वो भी सरकार का कितने जल्दी कैसे कर लिया। मतलब जो हमारा टारगेट है 2027 अगस्त में पहली जो बुलेट ट्रेन है वो सूरत से दिल्ली मोरा चलेगी। इसमें जो डेवलपमेंट है वो बता दो श्रोता बंधुओं को, तो सुनकर आपको आश्चर्य होगा

0: चला है और टोटल अगर पेयर्स देखें तो 447 पेयर्स होने थे, जिसमें से 352 पेयर्स और फाउंडेशन वो गुजरात में होने थे, गुजरात में हो गए 95 पेयर्स महाराष्ट्र में हुए। गटर्स 367 टोटल होने थे, उसमें 346 गुजरात में होने थे, सारे के सारे हो गए। गटर का लॉन्चिंग उसमें भी 341 गटर लॉन्च हो गए। तो टोटल 30 किलोमीटर, जो कि जब ट्रेन बिछाते हैं उसके बाद हम ट्रेन चला सकते हैं। तो आपको बता के देते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि बुलेट ट्रेन के 193 किलोमीटर के ट्रैक भी बिछा दिए गए हैं। और ट्रैक से भी काम नहीं चलता क्योंकि चलाने के लिए इंजन चाहिए होगा, ये इलेक्ट्रीफाइड टेरिटरी है। तो उसमें 185 किलोमीटर का ओएचई, जिसको कि ओवरहेड इक्विपमेंट बोलते हैं, जो तार लगता है इलेक्ट्रिक का, वो भी लगा दिया गया। तो बहुत ही चैलेंजिंग है और इतने तेज से काम करने में हर को आश्चर्य कि इतनी जल्दी इंडिया कैसे कर रहा है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीनरी है, जो जो हमारे कॉन्ट्रेक्टर है, सब इंडिया के हैं। सब पहले सीखा उन्होंने अपने यहाँ लॉन्चर, अपने यहाँ के क्रेन्स सभी ला करके यहाँ पे और काम करना स्टार्ट किया। अभी हाल ही में अहमदाबाद के बगल में गडर लॉन्च किया गया था, वर्ल्ड का बिगेस्ट गडर, 2000 टन का बुलेट ट्रेन में। उसमें बड़े यूनिक वे में क्रेन को यूज किया गया और क्रेन भी, जो इतना बड़ा क्रेन बहुत मुश्किल है काम करने में, जनरली वर्ल्ड कंपनियां के एरिया में काम करती है, वैसे क्रेन को लाया गया यहाँ पे, लगाया गया और काम करके और उसको सक्सेसफुली कर लिया गया। ये जो है अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन जो है वो जस्ट मणिनगर और अहमदाबाद के बीच में चेंज करती है, जितनी भी रेलवे की ट्रैक है, इंडियन रेलवे की ट्रैक है, उसको बुलेट ट्रेन क्रॉस करके इससे वेस्ट की हो जाती है। तो वो काम किया गया, काम तेजी से चल रहा है। जो अंडर सी टनल है महाराष्ट्र वाले पोर्शन में, उसमें भी तेजी से काम चल रहा है। और जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बिल्डिंग के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है उसमें भी काम तेजी से चल रहा है। तो ओवरऑल बुलेट ट्रेन में बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है और गुजरात के पोर्शन में तो बहुत ही चैलेंजिंग।
1: जी, हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द हमें ये सपना हकीकत में बदलता हुआ दिखे।
0: मैं बता दूं कि ये बुलेट ट्रेन जैसे है, बुलेट ट्रेन का जो 12 स्टेशन है, तो यहाँ पे अहमदाबाद और साबरमती, ये दो बड़े स्टेशन होंगे जो अहमदाबाद एरिया में है। ये दोनों स्टेशन जो है मेट्रो से जुड़े हुए हैं
1: जी।
0: और अभी जो एक हाल में यहाँ से धोलेरा लाइन, साकेत से धोलेरा लाइन को कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो अगर किसी को धोलेरा जाना हो, जो कि सेमीकॉन का हब होगा, मतलब सेमीकॉन इंडस्ट्री बैठने बैठ रही है वहां पे, बहुत सारी इंडस्ट्री आ रही है, तो उनको अगर जाना हो तो अगर वो बॉम्बे से चलते हैं तो 2 घंटा 5 मिनट में यहाँ पहुंचेंगे और अगले 48 मिनट में यहाँ से धोलेरा पहुंच जाएंगे। आप सोचो कि 2.5 से 3 घंटे में धोलेरा पहुंच जाएंगे और कोई भी समय उनका बर्बाद नहीं जाएगा, क्योंकि बुलेट ट्रेन में बैठ करके भी वो आराम से काम करते हुए आ सकते हैं और जाते समय भी काम कर सकते हैं और बिना किसी थकान के, बिना किसी इसके आराम से जर्नी भी कर सकते हैं।
1: नवी ट्रेन शुरू थवानी साथ साथ सर छेल्ला दायकामां रेलवे स्टेशनो पण बहु मोटा पाये बदलाई रहा छे, एक मोटो कायाकल्प थई रह्यो छे। तो बदलाता समय प्रमाणे आपणे स्टेशन जे आजे वैश्विक कक्षाना बनवा जई रह्या छे, अहमदाबाद अने साबरमती स्टेशन तो आ प्रवासना साक्षी बनी रह्या छे। तो पुनर्विकासनी जे कामगीरी छे अहमदाबाद अने साबरमती स्टेशननी, ए अंतर्गत हाल केटलुं काम पूर्ण थयुं छे अने आवनार भविष्यमां आपणे अहमदाबादना नागरिकोने कया कया प्रकारनी सुविधा एमां मळशे?
0: इसमें जो पहला जो ट्रायल किया गया था गांधीनगर स्टेशन का था, गांधीनगर जो कैपिटल स्टेशन है उसमें होटल भी एक बना हुआ है और उसके साथ साथ महात्मा मंदिर का प्रोजेक्ट है, तो वो पहला एक्सपेरिमेंट था। और रानी कमलापति भोपाल का वो दूसरा एक्सपेरिमेंट था, जिसको लेकर के एक्सपीरियंस गेन किया गया कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और यहाँ के परिप्रेक्ष्य में, मतलब इंडिया के परिप्रेक्ष्य में कैसे वर्ल्ड क्लास स्टेशन डेवलप हो। कॉपी करना तो बहुत आसान है, लेकिन कॉपी करने से वो चीज नहीं आता है, लोगों का वो एस्पेक्ट नहीं आता है जो यूजर एक्चुअली यूज कर पाए। तो उसके को एस्पेक्ट को लेकर के यहाँ काम किया गया और अहमदाबाद स्टेशन 2,379 करोड़ का काम तेजी से चल रहा है। साबरमती 335 करोड़ में काम करीब करीब 80% काम हो गया है, फिजिकल 85 के आसपास है और फाइनेंशियल 80% के आसपास है। और अगले सितंबर तक तो साबरमती स्टेशन का पूरा काम खत्म हो जाएगा। और अभी भी आप जाकर के देखे साबरमती स्टेशन में, तो आपको फील आएगा कि ये पूरा का पूरा एरिया कवर है। जो रूट प्लाजा है वो 87 मीटर बाई 37 मीटर का है और लोगों सबको ऊपर जाना है। अभी होल्डिंग एरिया का 21 स्टेशन में क्रॉस इंडिया काम हो रहा है, वहां भी होल्डिंग एरिया का काम हो रहा है, जैसे होली हो, दीपावली हो, छठ हो, तो हमारे जो ईस्टर्न लोग हैं जो इस एरिया में में काम करते हैं, इंजीनियर से वो घर आना चाहते हैं, तो उसमें इकाई भी आती है, उनको भी अकोमोडेट करने के लिए कोशिश किया गया है कि उनको भी अकोमोडेट करें कि वो आराम से आए, आराम से बैठे, आराम से जाए। तो ये पूरा का पूरा होलिस्टिक अप्रोच लेकर के यहाँ पे उधना में, सूरत में भी 1,200 करोड़ का काम चल रहा है, इसके अलावा भुज में 201 करोड़ का काम हो रहा है, सोमनाथ में 157 करोड़ का काम चल रहा है, जूनागढ़ में 100 करोड़ का काम चल रहा है। तो ये सारे स्टेशन हैं, सारे जगह काम बहुत अच्छा से, बहुत प्रोग्रेस में है। और अहमदाबाद में मैं बताऊं कि ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेशन डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, और इसका जो रूप प्लाजा है इसमें जब लाख से ज्यादा आदमी रूप प्लाजा में ऊपर बैठ सकते हैं। दो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है जिसमें की जिसको कि हम लोग साउथ कॉम्प्लेक्स बोलते हैं अहमदाबाद में, जो कि कालूपुर साइड में है। आप जानकर के आपको आश्चर्य होगा कि उसमें अभी 8 फ्लोर का काम कंप्लीट हो गया है, नीचे के 2 फ्लोर है, मतलब 10 फ्लोर का काम हो गया है, उसके ऊपर और 8 फ्लोर का काम होना है, उसमें भी काम तेजी से चल रहा है। तो किसी भी जगह पे स्टेशन डेवलपमेंट का काम करना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन चलते हुए ट्रेन में
1: जी ये सबसे
0: जब ट्रेनें चल रही हैं उसमें ट्रेनों को कैंसिल नहीं करना है, उसमें ट्रेनों को एडजस्ट करके चलाना और सारी सुविधाओं को देते हुए चलाना, ये बहुत ही हरकुलियन टास्क है। और ये चैलेंज इंडियन रेलवे ने लिया है और उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर रहा है।
1: बराबर जो मैं कीधु एम अमृत भारत स्टेशन योजना हेठळ मोटा स्टेशनों साथ साथ नाना स्टेशनों में आज पुनर्विकास थई रह्यो छे। अने ज्यारे पण कोई स्टेशन में विकास थाय छे तो चोक्कसपणे आजूबाजू जे लोको होय, स्थानिक लोको, स्थानिक कला संस्कृति ए बधाने ज एक मोटो फायदो थतो होय छे। आ दिशा में जो रेलवे शुरू करेली वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल छे, जेथी स्थानिक कलाकारों के स्थानिक उत्पादनों एने एक मंच पूरो पाडवामां आवी रह्यो छे, तो शुं काम आज गुजरात में आ पहल हेठळ थयुं छे अने एनो केटलो फायदो स्थानिक शिल्पकारों होय के स्थानिक कलाकारों होय एने मळ्यो छे?
0: देखिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो कॉन्सेप्ट है, इसमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि कोई भी आदमी आकर के काम ले सकता है, अपना वो जो शॉप है, जो बेचने का जगह है वो ले सकता है। उसमें यही है कि स्टेशन मास्टर उसको लॉटरी करता है, अगर 50 लोगों ने अप्लाई किया इस महीने के लिए तो लॉटरी किया तो वो 15-15 दिन के रोस्टर में उनको मिल जाएगा। दूसरा चैलेंज क्या है कि इसमें पैसा बहुत ही नॉमिनल है, मतलब पूरे महीने भर का 1,500 रुपये के आसपास। तो जो हमारे जो आर्टिजन है, जो हैंडीक्राफ्ट मेकर हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म, उनके प्रोडक्ट जो बेस्ट ऑफ द मार्केट प्लेस है वहां पे जाए, उनका प्रचार हो, प्रसार हो और सही। तो ये एक प्रयास इंडियन रेलवे ने एक और इंडिया किया, मतलब आप देखिएगा विशाखापट्टनम में वहां के छोटे सेक्टर वाइज है, विषय में देखिएगा तो वहाँ आजमगढ़ की पोटर मिलेगी आपको, आजमगढ़ की पोटर लेने के लिए आपको आजमगढ़ जाना पड़ता है, अदरवाइज वो वही मिल रही है और उच्च रेट में मिल रही है। और जो बेचारा जो आदमी बेच रहा है उसके लिए है कि आसानी से ला करके यहाँ बेच रहा है और उसको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहा है। उड़ीसा में भी ऐसे ही कुछ, जैसे संबलपुर में और उड़ीसा के विभिन्न जगह में मुझे मालूम है कि उनको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने लगा, साड़ी बनाते थे लोग और साड़ी जा रही है उनके बाहर, और वहाँ वो उनको बोल रही है अब सर जरूरत नहीं कि मेरा मार्केटिंग हो गया, अब दूसरा आदमी वहां करके अब शॉप को चला रहा है। तो ये एक तरह से हमारे आर्टिजन को, हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स को, हमारे टॉयज मेकर को, हमारे बुनकर हैं उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और बड़ा नाम मिल रहा है।
1: एक बात अपनी चौक्स थी यहाँ कहनी चाहिए कि मात्र स्टेशन में विकास अथवा तो नवी ट्रेनों की शुरुआत एटलू ज आ 12 वर्ष में थयु नहीं, परंतु एक पायानी सुविधा अपने कही दिशा में बहुत मोटू काम थे, जो एक पाटा नु देवड़ीकरण हो इलेक्ट्रिफिकेशन हो स्टेशन की स्वच्छता हो, तो सर छेल्ला 12 वर्ष में अपने डबलिंग की बात करिए कि इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करिए तो कई मोटी सिद्धिओ रही है। जब आप गुजरात की बात करिए तेरे
0: पहले बताऊ ट्रैक कितना ट्रैक बना, तो 2,900 किलोमीटर के ट्रैक बने। ये कितना ट्रैक होता है 2,900 किलोमीटर? श्रोतागण में बताऊ डेनमार्क रेलवे पूरा जो है कंट्री है उसके बराबर इस 12 साल में केवल गुजरात में ये डेवलपमेंट हुआ, ये ट्रैक बिछे। और अगर मैं पूरे इंडिया को देखूं तो इस 12 साल में आपको बताऊं कि ये टोटल करीब करीब 36,000 किलोमीटर का ट्रैक बना, नया ट्रैक। 36,000 का मतलब कितना बड़ा हुआ, एक जर्मन रेलवे के बराबर, एक फ्रांस के रेलवे के बराबर। तो ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इतना डेवलपमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन का देखें, 100% गुजरात में इलेक्ट्रिफाई हो गया, 100% ट्रैक जो है गुजरात का इलेक्ट्रिफाइड है। अब इसका फायदा क्या है, डीजल कम तो हमारे इम्पोर्ट बिल कम, कंट्री को फायदा। अगर हम 2014 से अभी तक करें तो 300 करोड़ के आसपास लीटर डीजल इंडियन रेलवे यूज करती थी, आज ये 100 से भी कम है। जैसे आपको बताया स्टेशन डेवलपमेंट का काम उतनी तेजी से चल रहा है। अगर टोटल अगर किलोमीटर में हम देखें इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरे अक्रॉस द इंडिया का, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केवल दो रेलवे जो है वो 99% से ज्यादा उसमें इलेक्ट्रिफाइड है, स्विट्जरलैंड और इंडिया।
1: इंडिया
0: के मैप में अगर देखिए तो दो ही ग्रीन रेलवे दिखता है, वो एक इंडिया का और स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड का किलोमीटर बहुत कम है हमारे कंपेरिजन में, लेकिन बड़े रेलवे में केवल एक इंडिया दिखता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और आपको टनल के बारे में बता
1: जी,
0: तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी है कि टोटल टनल का किलोमीटर पूरे इंडिया में 2014 के पहले केवल 125 किलोमीटर होता था और आज 468 किलोमीटर है। इंडिया का सबसे बड़ा टनल, चाहे कोई भी हो, रोड हो, रेल हो, पहला, दूसरा, तीसरा, जो ट्रांसपोर्ट टनल है, तीनों के तीनों यूएसबीआरएल, जो कश्मीर है, जो जम्मू से लेकर के श्रीनगर को जोड़ने वाली जो ट्रेन बनी है ना अभी ट्रैक, जिसका कि हाल में पीएम साहब ने पिछले साल इनॉग्रेशन किया था, उसमें उसमें जो ब्रिजेज है, चेन्नई ब्रिज, मतलब काफी समय ऊंचा है। केवल वो ब्रिज केवल एक नहीं है कि एक बनाया रेलवे ने, बोगीबील जो कि असम में है, एशिया का सेकंड बिगेस्ट। अभी हाल में भैरवी सारंग सेक्शन का उन्मोचन किया गया, उसके ब्रिज 990 मीटर के पियर्स है। मोना ब्रिज जो मिजोरम में है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पियर ब्रिज है, वो बनकर तैयार हो गया है। आप पंगन ब्रिज के बारे में जानते होंगे रामेश्वरम में
1: जी,
0: मतलब की पहले वाला जो पंगन ब्रिज था खुलता था, आग ऊपर होता था और तब उसके नीचे से सिर जाती थी, अब वो वर्टिकल लिफ्ट पे जाता है। तो ऐसे ऐसे वर्ल्ड के मार्वल इंडियन रेलवे ने बनाया है, इंडियन रेलवे के इंजीनियर्स ने बनाया है।
1: ચોક્કસપણે મજબૂત પાયો જ એ ભવ્ય ઇમારતનો આધાર હોય છે, અને એની સાથે સાથે એક બીજો મુદ્દો પણ આવતો હોય છે જે સુરક્ષાનો હોય છે। હવે આપણે જેમ વાત કરીએ એમ સ્વદેશી ટેકનોલોજી ઉપર આજે રેલવે બહુ જ ભાર આપી રહી છે અને કવચ એનો એક મોટો દાખલો છે। તો કવચ જેવી ટેકનોલોજી જે છે એ અંતર્ગત આજે એના અમલીકરણમાં ખાસ કરીને સ્ટેશન ઉપર કે રેલવે પ્રવાસમાં જ સુરક્ષા વધારવા માટે
0: जापानी सिस्टम होता है, ये पहली बार सिस्टम है जो कवच का वो इंडियन रेलवे ने इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर बनाई और इसका ट्रायल जो है होकर के सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रहा है। और श्रोतागण को बताऊं मैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये वर्ल्ड की चीपेस्ट और मोस्ट रिलायबल टेक्नोलॉजी है। इसको सिल4 बोलते हैं, सिल4 प्रूफ है। इसका मतलब है कि सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल जो है इसका वो ऐसा है जिसमें कि अगर 10,000 साल तक अगर ट्रेवल करे इसमें कोई तो एक फेल्योर के चांसेस है। अभी 4.0 पे काम चल रहा है, 5.0 पे भी हम जाएंगे
1: जी।
0: 4.0 में जो टेक्नोलॉजी है उसमें ड्राइवर को बहुत ही हेल्प मिलेगा और उसमें क्या है कि ड्राइवर का कॉस्ट ऑर्डर मेंटेन करना, ब्रेकिंग सिस्टम, एक ट्रेन का दूसरे ट्रेन से टकराना, ये सारे एस्पेक्ट को लिया गया है। इसमें स्टेशन कवच है, एक स्टेशन के ऊपर लगा हुआ है, एक ट्रेन कवच जो ट्रेन के ऊपर लगा हुआ है, दूसरा है RFID जो कि हर स्लीपर पे कुछ कुछ डिस्टेंस पे लगा हुआ है, तो उसके बेसिस पे स्लीपर को रीड करता है उसके किलोमीटर को। तो ट्रेन का कवच है वो एंटीना से ट्रांसफर करके स्टेशन कवच को बताता है कि हम यहाँ पे हैं। और अकॉर्डिंगली अगर कोई दूसरी ट्रेन उसे सेक्शन में घुस रही है तो जैसे ही वो एक बेसिक डिस्टेंस से आएगा, सेफ्टी डिस्टेंस के अंदर आएगा, जैसे 2 किलोमीटर के अंदर आता है, 1.2 किलोमीटर में हमारा ब्रेकिंग सिस्टम लगता है, तो अगर वो आ जाता है तो अपने आप रुक जाएगा। तो जब इसका एक बार पहली बार एक्सपेरिमेंट किया गया तो सरप्राइज होंगे आप कि हमारे एक तरफ चेयरमैन थे, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, और दूसरी तरफ हमारे मिनिस्टर साहब थे अश्विनी वैष्णव जो रेलवे के मिनिस्टर हैं, तो सारे ऑफिसर डर रहे थे कि पता नहीं फेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा। सर ने बोला नहीं, एक तरफ मैं चलता हूँ और एक तरफ चेयरमैन चलेंगे। उसके दोनों तरफ से ट्रेन आई, पूरी फुल स्पीड में चली सेक्शन में, और जैसे ही वो 5 किलोमीटर के अंदर आई अपने आप ब्रेकिंग लगने लगा। हम लोगों को लगा कि कहीं ड्राइवर तो नहीं लगा रहा है। हम लोगों ने पूछा ड्राइवर से कि क्या तुम्हें तो ब्रेक नहीं लगाया, बोला नहीं नहीं सर अपने आप लग रहा है
1: जी, मतलब बहुत
0: बड़ी। और ये बहुत बड़ी चीज, अपने आप गाड़ी हल्के रुक गई। और ऐसा ही लेवल क्रॉसिंग गेट में, अगर लेवल क्रॉसिंग गेट खुला हुआ है तो अपने आप ब्रेक लग रहा है। तो ड्राइवर्स के लिए जो एम्पावरमेंट है इससे, जो सेटिस्फेक्शन है उनके चेहरे पे, वो काबिल तारीफ है। और इसके साथ साथ सेफ्टी, क्योंकि पैसेंजर सेफ रहेंगे, जो इम्प्रूवमेंट है उस टेक्नोलॉजी के चलते, क्योंकि इससे कैपेसिटी इंक्रीज करेगी मेनी फोल्ड, तो वो उसके उनके अलग फायदे होंगे। तो ऐसे अगर देखा जाए कि इस टेक्नोलॉजी को जो हम बना रहे हैं 1 किलोमीटर में, ये वर्ल्ड का सबसे सस्ता टेक्नोलॉजी होगा। और हम अपने यहाँ बनाने के बाद ऑलरेडी डिमांड डिफरेंट वर्ल्ड से आ रहा है कि भाई हमारे यहाँ भी कवच लगाए, हमारे यहाँ भी कवच लगाए, तो बहुत जल्द ધીમેકી ટેકનોલોજી કા ડંકા પૂરે વર્લ્ડ ઓવર માં બજેગા.
1: સુરક્ષાની સાથે સાથે આજે બીજી કોઈ રેલવેની મોટી સફળતા હોય તો એ ડિજિટલ સેવાની છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આજે રેલવેની તમામ સેવાઓ આપણને એક ક્લિક પર જ ઉપલબ્ધ છે. ટિકિટ બુકિંગથી લઈને પાર્સલ સર્વિસ સુધી આજે ડિજિટલ ઇન્ડિયા હેઠળ રેલવેમાં બહુ મોટું પરિવર્તન આવ્યું છે. શું કહેશો આ પ્રવાસ વિશે?
0: દેખીએ, ઇન્ડિયા કે પરિપ્રેક્ષ્ય મેં હર કોઈ આદમી જો પહેલા કમ્પ્યુટર અગર દેખા તો વો રેલવે કે પીઆરએસ મેં લિખા, રેલવે કે ટિકટિંગ સિસ્ટમ મેં દેખા. ટિકટ જો હૈ વો કિસ તરહ લોગો તક પહોંચાયા જાય. પહેલે જો ટિકટ કા યે સિસ્ટમ થા, મેન્યુઅલી બનાયા જાતા થા કે યહાં સે ઇતના બર્થ, યહાં સે ઇતના બર્થ, ઇતના બર્થ, કોટા એસે રિલીઝ કરેંગે, એસે નહીં કરેંગે. ઇસકો પીઆરએસ સિસ્ટમ મેં ડાલા ગયા, એકદમ પારદર્શક. ઓર અબ તો ઇસ લેવલ પે આ ગયા હૈ કે એક સાથ કિતને ભી આદમી જોઇન કર લો, કોઈ પ્રોબ્લમ નહીં હોતા હૈ. અબ તો હમ ઉસકો ચેકિંગ કર રહે હૈ કે એક સાથ જોઇન નહીં કરના ચાહિયે, ક્યોંકિ એક સાથ ઇતને લોગ જોઇન કર લેતે હૈ, ઉસકા બહુત દિન બાદ ટિકટ તુરંત ખતમ હો ગયા. તો ચૂંકિ એક સાથ ઇતની ફેસિલિટી કઈ રેલવે ને ઇતના ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કિયા તભી યે સંભવ હૈ. દૂસરા કે જો હમારે સ્ટેશન્સ હૈ, ડિજિટલ સ્ટેશન્સ હમ ઉસકો બોલતે હૈ, તો પહેલે સિગ્નલ ઓપરેટ હોતે થે વો મેન્યુઅલી લીવર ફ્રેમ મેં હોતે થે. અભી જો વર્લ્ડ કા સબસે બડા યે હૈ વો ડિજિટલ સ્ટેશન કા ભી હોના હૈ. અભી ટોટલ હમારે કરીબ કરીબ 4000 સ્ટેશન ડિજિટલ સ્ટેશન હો ગયા. આપ આરામ સે વોઇસ કે ટિક પે ટ્રેન કા મૂવમેન્ટ ડિસાઇડ કરતે હૈ ઓર પૂરા સેફ્ટી કે સાથ કરતે હૈ, તો ગલતી હોને કે ચાન્સીસ કમ, ઇમ્પ્રુવમેન્ટ જ્યાદા. તીસરા જો સબસે બડા યે હૈ કે વર્લ્ડ કા યે પહેલા રેલવે હૈ જો અપને ગ્રહણ સર્વર સે જો હૈ વો સોશિયલ મીડિયા કે થ્રુ કરતા હૈ, ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પે કરતા હૈ. કિસી ભી શ્રોતાગણ કો અગર કોઈ ભી પરેશાની હો, આપ રેલવે ઇન્ડિયા કો ટ્વીટ કરે, ઓર અગર આધા ઘંટે કે અંદર આપકો રિસ્પોન્સ નહીં મિલા તો દેખીએ, તો ઉસકે સ્ક્રેટિંગ ફેક્ટર લગે હુએ હૈ, તો ઉસકે જો બ્રાન્ચ ઓફિસર હૈ ઉનકે પાસ ચલા જાતા હૈ, ફિર ઉસકે ઉપર ડીઆરએમ કે પાસ ચલા જાતા હૈ, ઉસકે બાદ જીએમ કે પાસ ચલા જાતા હૈ, ઓર યે પર્સનલ લેવલ પે મિસ્ટર સાહેબ ભી મોનિટર કરતે હૈ કે લોગ કિતને જલ્દી કિતને દેર મેં ગ્રીવાન્સ રિહર્સલ કર રહે હૈ. જરૂરત હો 139 કો ફોન કીજીએ, ડિજિટલી આપકા ફોન રિકોર્ડ હો જાયેગા ઓર ઇમિડિયેટલી એક્શન હોગા. ઉસકે બાદ દેખીએ કે રેલવે કે જો સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ હૈ વો કૈસે આપકો પ્રોવાઇડ કરેંગે. તો યે પૂરા કા પૂરા ઇમ્પાવરમેન્ટ, યે વર્લ્ડ કા સબસે બડા પ્રોગ્રામ હૈ.
1: ડિજિટલ ક્રાંતિ એ તો મુસાફરોનો અનુભવ ખૂબ જ સરળ બનાવી દીધો છે. તો આ કાર્યક્રમના અંતમાં હું ચોક્કસ આપની પાસેથી જાણવા ઈચ્છું છું કે ભાવિ રેલવેનું શું હશે અને ભવિષ્યની આવનાર ભવિષ્યમાં ગુજરાતના રેલવે નેટવર્કને એક વિશ્વ કક્ષાને બનાવવા માટે શું વિઝન કે શું યોજના આજે રેલવેની છે?
0: અભી મેં બતાઉં, રેલવે કે ચાર આયામ હોતે હૈ
1: જી.
0: પહેલા ટ્રેક, દૂસરા સ્ટેશન, તીસરા કોચેસ ઓર વેગન, પેસેન્જર કે ટ્રેન મેં કોચેસ ઓર વેગન કે ટ્રેન પે જો ટ્રેન જાતા હૈ ઉસકે ટ્રેન મેં વેગન, ઓર ચોથા ઇન્જન. તો હમારે યહાં વ્હીલ કા પ્રોબ્લેમ હોતા થા, ફોર્સ વ્હીલ જો હાઈ સ્પીડ કી ફોર્સ વ્હીલ હૈ ઉસકે લિયે હમકો અલગ અલગ જગહ સે લાના પડતા થા. તો યુક્રેન કા ક્રાઇસિસ ચલ રહા થા, યુક્રેન એક મેજર યે હૈ જહાં સે વ્હીલ આતા થા. ઉસ સમય કે ક્રાઇસિસ કો દેખતે હુએ યહાં પે ડિસાઇડ કિયા ગયા કે નહીં, હમ વ્હીલ ખુદ બનાયેંગે. ફોર્સ વ્હીલ કે લિયે હમ લોગો ને ટેન્ડર કિયા, ઉસમે એસા પ્રોબ્લેમ કિયા કે ઇન્ડિયન કંપની હી ઉસકો લે સકતી હૈ
1: જી.
0: હમારા વ્હીલ કા રિક્વાયરમેન્ટ કરીબ 1,00,000 વ્હીલ કા હૈ, ઓર ઉસકી ફેક્ટરી કો બેઠાયા ગયા. ઓર આપકો જાણકર આશ્ચર્ય હોગા કે હમને 30 સાલ કા એસોરન્સ દિયા કે 30 સાલ તક હમ ઉસકો 1,00,000 વ્હીલ હર સાલ લેંગે. ઉસકે બલ પે જો કંપની હૈ ઉસને જો અપની ફેક્ટરી ડાલી 4,00,000 વ્હીલ કી, 1,00,000 વ્હીલ હમકો દેગા, ઇન્ડિયન રેલવે કો દેગા, બાકી 3,00,000 વ્હીલ એક્સપોર્ટ કરેગા. તો જો હમ ઇમ્પોર્ટ કરતે થે વો એક્સપોર્ટ મેં ચેન્જ હોય. વેગન હમારે યહાં જો વેગન હોતે થે પહેલે 5,000-8,000 વેગન એસે બનતે થે. ફિર યે હુઆ કે જો વેગન લેવલ મેન્યુફેક્ચર હોતે વો બડે કન્ફ્યુઝ હોતે થે કે ક્યા કરે. હર સાલ કા બિલ હર બાર કા એક હી બાર આતા થા કે ભાઈ ઇસ સાલ 5,000 લેંગે આપસે, સબકો ઓર્ડર જાતા થા, 50 લોગ હૈ તો કિસી કો 100, કિસી કો 400, કિસી કો 500, એસે બનતા. અબ લોંગ ટર્મ કા કન્સેપ્ટ બનાયા ગયા કે પહેલે તો વેગન કા રિક્વાયરમેન્ટ જો દેશ કા રિક્વાયરમેન્ટ હૈ ઉસકે બેસિસ પે કિયા ગયા, 30,000 વેગન બનાને કે કામ કિયે ગયે એક એક સાલ મેં. ઉનકો લોંગ ટર્મ દિયા ગયા કે 30,000 વેગન આજ, ઇસ સાલ, અગલે સાલ 30,000, અગલે સાલ 30,000. તો અબ ઉસકે બલ પે જો વેગન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કે જિતને લોગ પાર્ટિસિપેન્ટ થે, અબ વો કોઈ નઈ ઇન્ડસ્ટ્રી, નઈ ગ્રોથ, વો સબ કે ડાલના સ્ટાર્ટ કી. ઓર ઇસકા યહી કારણ હૈ કે જો વેગન પહેલે મતલબ 10 से 14 મેં 1,00,000 વેગન બનતે થે, અભી 2,35,437 વેગન બનાયા પિછલે 10 સાલ મેં. અગર મેં દેખું તો લોકો કે પ્રોડક્શન મેં વો 4,000 લોકો પ્રોડ્યુસ હુએ 10 સાલ મેં પિછલે, ઓર ઇન 10 સાલ મેં 12,763 લોકો ઉસકે પ્રોડક્શન મેં. ઉસી તરહ સે દેખું અગર LHB જો વેગન જો હમારે યે હૈ टोटल कोचेज जो बने वो करीब करीब 2337 के बने थे 10 साल में, और ये 49,354 एलएसबी कोचेज बने। ये सब इस तरह से बनाए गए, इस तरह से इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व किया गया कि हमारे यहाँ इंडियन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, और उससे प्रोडक्शन में फायदा हो रहा है और एक्सपोर्ट भी बढ़ गया, क्योंकि ये जो भी इंडस्ट्री जो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट की अपने को ग्रोथ की, तो नाउ दे आर एबल टू कम्पीट विद द वर्ल्ड मार्केट, क्योंकि यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर सीख गया, स्केलिंग से उनका कॉस्ट कम हुआ, कॉस्ट कम होने से वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट करने लगे। और कुछ आपको ये भी आश्चर्य होगा कि जो जो कंटेनर के जो जो स्टील होती है, कॉटन स्टील से बनता है, वो इंडिया में बनता ही नहीं था, फिर बाद में उसको देखा गया कि कौन से स्टील से बनता है, कैसे बनता है, और आज गुजरात बना रही है इसको। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसको कि इंडियन रेलवे ने आत्मसात किया है, जिससे कि हमारे खुद की इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है जो कि पहले हम इम्पोर्ट करते थे, और अब उसको प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है, एक्सपोर्ट भी कर रही है।
1: રેલવે ના આધુનિક વિકાસ ની યાત્રા નો અમારા શ્રોતાઓ ને પરિચય અપાવ્યો તે બદલ આપનો ખુબ ખુબ આભાર। શ્રોતા મિત્રો, 12 વર્ષના આ સુશાસન કાળ માં ભારતીય રેલવે માત્ર પાટા પર દોડી નથી, પરંતુ વિકાસ ની નવી ઊંચાઈઓ પણ સ્પર્શી રહી છે। આશા છે કે આવનાર ભવિષ્યમાં રેલવે નો આ વિકાસ વધુ ઝડપથી થશે અને આપણે બધાને જ વૈશ્વિક કક્ષાની સુવિધાઓ મળશે। આ સાથે જ આ કાર્યક્રમ અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ, ફરી મળીશું એક નવા વિષય સાથે, ત્યાં સુધી નમસ્કાર।
2: હમણાં જ આપ સાંભળી રહ્યા હતા 12 વર્ષ સુશાસનના શ્રેણી અંતર્ગત ભારતીય રેલવે વિકાસની નવી સફર અંગે વિશેષ ચર્ચા। ચર્ચામાં ભાગ લઈ રહ્યા હતા પશ્ચિમ રેલવે અમદાવાદના ડિવિઝનલ રેલવે મેનેજર વેદ પ્રકાશ અને આકાશવાણી અમદાવાદના સંવાદદાતા અર્પણ ખુંટ।

दिल का तार चुपके से किसी के पैर से जुड़ गया। खोजती आंखों में ख्वाहिशें पनाह पाने लगे, किसी से मुलाकात के जतन होने लगे। आंखें मिली, दिल मिल गए तो यूं दूर रहकर दिल को तकलीफ देना नाइंसाफी लगने लगी। तो फिर मिलने की दुआएं

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। पता नहीं था जुड़ेंगे दो दिलों के तार कुछ यूं, एक साथ दिल की धड़कने गाएंगे प्रेम का तराना। पता नहीं दिल के एहसास उनके दिल तक पहुंच जाएंगे। पता नहीं था मोहब्बत ये छोटा सा लफ्ज लिख देगा जिंदगी की वसीयत। पता ही नहीं था वादा होगा चांद सितारों से साथ निभा।

छवि की मानंद हो जाती है जिंदगी जब चलती है प्यार के बयार। जिंदगी की कश्ती हौले हौले तैरती है लेकिन वक्त की सुई तेज चलने लगती है। एक लड़की जब प्यार के रथ पर सवार होती है तो पीछे मुड़कर नहीं देखती, वो सिर्फ प्यार बोलती है, फिर प्यार उड़ती है, प्यार पहन अपने सपनों की नगरी में चल पड़ती है।

उनकी आवाज के पार भी एक आवाज थी। उनकी आवाज ने जिंदगी की तपती धूप को नरम छांव में तब्दील कर दी। उनके अल्फाज दिल की घाटी में चंचल लगे की तरह उतरने लगे। आसमान की तरह उनका कद आंखों में बस गया। बस उस रोज से होठों पर

आज का छाया गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपने रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मसाह आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेक्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेक्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियांग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 7% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. The Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also

0: आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जन कल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
2: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
1: जी,
2: विश्वास और जन कल्याण
1: जी,
2: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जन कल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपए भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपए जाएगा, ये पहली बार हुआ है। वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपए भेजते 85 रुपया गायब हो जाता है। विश्वास इस बात का कि सरकार किस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट में पूरे हुए
1: जी।
2: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो। तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा, जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बढ़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
1: बिल्कुल।
2: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
1: जी,
2: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना, ये भारत की महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जन कल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बनाता है।
1: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है, प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत में विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
2: मुझे ये उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
1: जी।
2: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश है उन्होंने अपने स्पेस से ज्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा
1: जी।
2: और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
1: जी।
2: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अकाल, सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिगकैट अलायंस जैसा विषय हो, तो भारत में दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
1: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो एमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर इससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर कि दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पर बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, आप खुद भी ईवी में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
2: ये सकारात्मक प्रयास है, जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है। अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीन डे रहा है, अखबारों में भी आया है, लेकिन जहाँ पर मनुष्य आधारित गतिविधियाँ होती हैं, वहाँ PM2.5 और PM10 ये दो जो तत्व है, मतलब PM2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती है उद्योगों से, व्हीकल से, और PM10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है इसको एयर पार्टिकल कहते हैं, वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो एक्यूआई है उसको खराब करता है। तो उसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है, व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फील्ड की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज है जो अनधिकृत क्षेत्र में है उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है उसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहाँ के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है, व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है, और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक, इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
2: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए। इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती है उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड

0: वो क्या करते थे। अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल, रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना बीपी है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं। नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुभ में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह की पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में केप टाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है उसका तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं। और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत में विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
1: अगले सवाल की मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते, की कौन सी पहल और उपलब्धियां रही है?
0: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
1: जी।
0: और नेचर का ये नियम होता है कि जहाँ प्योरेस्ट नेचर होती है वहाँ पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सरवाइव करते हैं
1: जी।
0: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है तो इसमें 7 डिटेक्ट है। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टिमेशन हम लोगों ने कराया है, लायन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है। और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता, उसका भी हमने वापस से रीइंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के

0: टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी, वो बढ़कर के 58 हो गई है। जो एलिफेंट रिजर्व है उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है। जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लायन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टिमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टिमेशन किया है। उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स है उनके जो राइट्स है उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
0: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है जहाँ ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है उनकी ट्रिब्यूटरी पर अपने फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पर भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और माइक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसमें अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय है उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहाँ पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नजदीक है, अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर है उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी, जो बड़ी झीलें भी हैं, उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, अब वो आज एक जन आंदोलन बन गया है इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। वैसे की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
0: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूँ कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है जी। और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था जिसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया, और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहां पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं, लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान

0: सकते हैं, लेकिन वो चिड़िया के लिए दाना नहीं बना सकता है ना, पक्षियों को छांव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है। जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना, लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए, और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है, और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी, और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
0: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो
1: जी,
0: पानी नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे
1: जी?
0: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो, लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है, गेहूं से आटा बनता है, लेकिन वो तो नेचर से आता है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, वो तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा
1: जी।
0: आप एक बात बताइए कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहां से आती है
1: जी।
0: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमत्ता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
1: जी?
0: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे? कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन
1: जी,
0: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल, और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है
1: जी। हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की, तो जब भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की, यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया खुद के लिए, तो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
0: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो के है
1: जी।
0: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नई एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलाइंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वन क्षेत्र बना है, तो वो नेट जीरो के लिए है।
1: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉर्पोरेट जगत का कितना इम्पोर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
0: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉर्पोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉर्पोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉर्पोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाए, अपनी इंडस्ट्री को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह

0: है, अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है
1: जी।
0: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए और मैं एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पर कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पर भी कभी जीवन था।
1: क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा है, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: पहला तो एक फिर माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पर ज्यादा से ज्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पर अपनाएं, तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
1: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास की, विकास की, जन कल्याण की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

हमारे सिनेमा का स्वर्णिम युग गोल्डन एरा आमतौर पर 1940 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक माना जाता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये दौर 1965 तक का है। इस दौर में कहानी, संगीत, अभिनय, सामाजिक विषयों और सिनेमाई कला ने नई ऊंचाइयां छुई। यह हिंदी फिल्म उद्योग का सबसे प्रभावशाली और यादगार समय माना जाता है। इसी दौर से हम आपके लिए चुनकर लाए हैं कुछ चुनिंदा नगमों को जो बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारे हैं। उन्हीं नगमों में से एक नगमा सबसे पहले फिल्म चोरी चोरी से और फिल्म आई थी 1956 में। इसका निर्देशन किया था अनंत ठाकुर ने और इसे लिखा था आगाजनी कश्मीरी ने। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया नरकेश, राज कपूर, प्राण, गोपी, भगवान, डेविड मुकरी, राज मेहरा, जॉनी वॉकर, इंदिरा बंसल वगैरह ने। इस फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है, लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और बेहद खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। तो आइए सुनते हैं इसी बेहद खूबसूरत फिल्म का यह बहुत ही प्यारा नगमा जिसे लिखा है दरअसल शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे साहब की।

0: फिल्म चोरी चोरी से और इस गीत को लिखा था शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवाला था शंकर जयकिशन साहब ने। खास बात यह है कि शंकर जयकिशन साहब को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के पुरस्कार से नवाजा गया था क्योंकि इस फिल्म के सारे ही नगमे बहुत ही प्यारे बहुत ही खूबसूरत से वो ये फिल्म आई थी 1956 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 16.1 मेगा।
1: हमारे समाचार विभाग द्वारा प्रस्तुत विषय श्रेणी आप सुन रहा था। आज में विषय है तो आतंकवाद। कार्यक्रम अमारा दिल्ली केन्द्र पर प्रसारित करवामां आव्यो।

विशाल अंबरनाथ वडोदरा। एक नजर आवतीकाले प्रसारित थनारा कार्यक्रमों पर। सवारे 6:05 भक्ति संगीत नो कार्यक्रम अर्चना। 6:30 अमृत धारा में स्वच्छता विषय प्रोफेसर अश्विन एम आंदाणी चित्रात्मक लघुवार्ता। 6:35 श्री राम चरित मानस गान। 6:45 फिल्म संगीत कार्यक्रम सूर सरिता। बराबर 7:00 सभा बाहर गीतों। 8:30 एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 9:00 माहिती और मनोरंजन नो कार्यक्रम सवारे सवारे। 9:30 गुजराती गीतों। 10:02 उर्दू मजलिस में अकील अंसारी शातिर इरशाद आतिफ द्वारा मुशायरा। 10:45 सुगम संगीत कलाकार छे डॉक्टर फाल्गुनी डॉक्टर। 11:12 फिल्म संगीत। 11:30 हिंदी गीत गजल। 12:02 गुजराती गीतों। 12:12 मोटा कार्यक्रम सहयार में श्रोताओं ईमेल्स और पत्रों पर आधारित कार्यक्रम। 11:10 सुगम संगीत कार्यक्रम कलाकार साधना सरगम। 11:30 फौजी दोस्तों मेटी कार्यक्रम जय भारती। हमारी साधनी सभा में 5:10 फिल्म संगीत का कार्यक्रम कौन महोर। 5:45 लोक संगीत मित्रों 5:45 लोक संगीत कार्यक्रम कलाकारों से वसंत रोहित और गोवर्धन भाई व्यास। मित्रों आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 आवतीकाले हेडिंगले लीड्स खाते भारत और नेदरलैंड्स वच्चे मैच रमाशे। जेने रनिंग कॉमेंट्री तथा मैच पूर्वनो कार्यक्रम आप सांभळी शकशो 6:30 थी। मुख्य समाचारनी बात करता रमतना अंत सुधी। कार्यक्रमनी विगत बाद हवे जोईए स्थानिक हवामान समाचार। अमदावाद शहरनुं आजनुं महत्तम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस नोंधायुं, जे सामान्य करता 2.4 डिग्री सेल्सियस वधु रह्युं। જ્યારે લઘુત્તમ તાપમાન 29 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું, જે સામાન્ય કરતા 1.6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વધુ રહ્યું। રાત્રે 7:30 વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ 50% નોંધાયું। આગાહી છે કે આકાશ મુખ્યત્વે વાદળછાયું રહેશે। મહત્તમ તાપમાન 41 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેવાની સંભાવના છે। તો આ હતા સ્થાનિક હવામાન સમાચાર। 354.6 મીટર અર્થાત 846 કિલોહર્ટ્ઝ પર આકાશવાણીનું આ અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર છે। મિત્રો અત્યારે રાત્રિના 11:49 થઈ રહી છે। અમારી આજની બીજી સભા અહીં સમાપ્ત કરીએ છીએ। પ્રથમ સભામાં આવતીકાલે સવારે 5:50 આ જ મીટર્સ પર આપણે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપશો। પરંતુ અમારા ડીટીએચના માધ્યમ દ્વારા ગુજરાતી પ્રસારણ સેવા આપ સાંભળી શકો છો। નમસ્કાર, શુભરાત્રી, જય હિન્દ।